0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये, एक तेरा ही सहारा है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: ठंडा मौसम में राव रेडियो दोस्त दीपाली रोज की तरह हाजिर बाड़ी, प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल लेके। दोस्त लोग, सवेरे सवेरे जब ले हम रउआ से ना मिली, तब ले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा, त श्रोता लोग सवेर त हो गइल बा। हमरा पता बा कि रउआ सब अपना कान के रेडियो सेट के पास लगावले बानी आज के घरेलू नुस्खा सुने खातिर। ता अब हम अपना कार्यक्रम की शुरू करी, उससे पहले रउआ सब की दीपाली की ओर से नमस्कार, सुप्रभात। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चमकत त्वचा खातिर कुछ पौष्टिक पेय के बारे में। दोस्तों, अपना डाइट में शामिल करी जूस और पानी। पेय पदार्थ के हमनी के डाइट में एगो अलग ही भूमिका होला, फिर भले ही वो पेय पदार्थ पानी हो के या जूस। के नियमित सेवन से हमनी के त्वचा में निखार आवे के साथ ही शरीर की भी भरपूर ऊर्जा मिलेला। फ्रूट जूस जहां आयरन और विटामिन से भरपूर होला, उन्हें वेजिटेबल जूस यानी सब्जी के जूस शरीर खातिर उपयोगी पोषक तत्व से युक्त होला। तरह के जूस के सेवन शरीर खातिर फायदेमंद होला। यदि रउआ बेहतर स्वास्थ्य पावे के इच्छा रखतनी, तो रउआ आज ही से अपना डाइट में जूस और पानी के उचित मात्रा के शामिल करे के होई। कम मात्रा में पानी पिए से हमनी के शरीर में पानी की कमी हो जाला, जेके प्रभाव शरीर के साथ ही त्वचा पर भी देखल जा सकेला। त्वचा के चमक के बरकरार रखे खातिर रुआ हर दिन भरपूर मात्रा में पानी के सेवन करे के चाही। पानी हमनी के त्वचा के कोशिका के भी प्रमुख तत्व होला। हमनी के त्वचा के बाहरी नमी के बरकरार रखे खातिर ओई पर मॉइस्चराइजर लगावे निसन, ओई प्रकार से त्वचा के अंदरूनी नमी व पोषण प्रदान करे खातिर हमनी के पानी के अधिक से अधिक सेवन करे के चाही। सौ प्रति प्रतिशत फल या सब्जी से बनावल गयी जूस हमनी के शरीर में विटामिन के पूर्ति करे के साथ ही त्वचा के भी पोषण प्रदान करेला। जवाब होके के साथ ही जूस त्वचा की गहराई से सफाई कर विषैला पदार्थ के बाहर निकालेला। एगो रिसर्च के अनुसार गहरा रंग के फल के जूस शरीर खातिर अधिक गुणकारी होला। ब्लूबेरी के जूस में हमनी के शरीर व त्वचा के लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर मात्रा होला। चुकंदर के रस भी स्वास्थ्य खातिर बहुत फायदेमंद होला। ओलोंग टी के ब्लैक ड्रैगन टी के नाम से भी जानल जाला। के ई विशेष प्रकार रोज चाइनीज रेस्टोरेंट में देखे के मिली। ई चाय में भरपूर मात्रा में पॉलीफिनोल्स होला जौन की एक्जिमा और झुरी जैसन समस्या से त्वचा की सुरक्षा करेला। आँख के नीचे काला घेरा चेहरा पर झुरी जैसन बढ़त उम्र के लक्षण के कम करे व वजन के नियंत्रित करे में ओलोंग टी बड़ा ही कारगर होला। त्वचा के लालीपन व खुजली के खत्म करे के साथ ही एलोवेरा के जूस त्वचा संबंधी अन्य समस्या जैसे एक्जिमा सोरियोसिस में भी औषधि के तरह काम करेला। शुद्धि पाचन क्रिया के बढ़ावल आर्थराइटिस में कारगर व शारीरिक क्षमता के बढ़ावे के साथ ही एलोवेरा जूस के अनगिनत फायदा होला। रोजाना एक कप एलोवेरा जूस के सेवन हमनी के स्वास्थ्य व त्वचा संबंधी कई गो समस्या के निदान में कारगर है। बगैर उबालल हरा पत्ती से बनावल जाला। यह वजह है कि ग्रीन टी में उच्च स्तर पर पॉलीफिनोल्स होला। जौन एगो ऐसन केमिकल कंपाउंड है जौन के पिगमेंट एंटी एजिंग के तौर पर कार्य करके त्वचा में झुरी के कम कर ओई के फोटो प्रोटेक्शन देवेला। विशेषता ओई के एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होला। बाल खातिर भी ग्रीन टी बेहतर है। यदि हम शुद्धता की बात करी तो चाय में शुद्धता के मामला में ग्रीन टी से बेहतर कौनो नहीं थे। टी भी ग्रीन टी के समान पत्ती से ही बनावल जाला। स्वीट स्पाइसी चॉकलेट आदि ब्लैक टी के अलग अलग फ्लेवर्स होला। विटामिन ई और सी के साथ ही ब्लैक टी में मौजूद स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर प्रीमैच्योर एजिंग के लक्षण के कम करेला। ऐसन एस्ट्रिजेंट के तौर पर काम करेला जैसे चेहरा बेदाग व चमकदार बनेला। ब्लैक टी के बेहतर परिणाम खातिर एके बिना दूध के पी काहे कि दूध एके एंटीऑक्सीडेंट गुण के घटावेला। कॉफी के सेवन ना करी। कॉफी में कैफीन व शुगर की अधिक मात्रा होखे के कारण इस त्वचा पर कील मुहासा के कारण बनेला। मौजूद टैनिन त्वचा के शुष्क बनावेला। अल्कोहल त्वचा के नमी के सोख त्वचा में ढीलापन लावेला। बहुत सारा कॉकटेल, डाइग्यूर्स और मार्गरीटा में शुगर की बहुत अधिक मात्रा होला जौन त्वचा के नुकसान पहुंचावेला। मौजूद शुगर व अन्य सामग्री हमनी के स्वास्थ्य खातिर नुकसानदेह होला। सोडा की अधिक मात्रा शरीर में पानी के स्तर की कम कर देवेला। शरीर व बेहतर स्वास्थ्य खातिर जहाँ तक संभव हो के हमनी के सोडा पिए से बचे के चाहिए। दोस्त लोग अब हम लेम आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम से जाए की अनुमति। ता खुशी खुशी आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। आरवा सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। फिर होई हमार भेंट काल। तब तक खातिर नमस्कार।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: कभी प्रेम किया है? लव किया है तो ये तो जानते ही होंगे कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन शांतनु और गंगा के प्रेम में थी और ये शर्त शांतनु को तब भारी पड़ने लगी जब गंगा ने एक एक करके अपने बच्चों को नदी में बहाना शुरू कर दिया। मैंने शांतनु की वो पीड़ा देखी है, मैं वो आंख हूं जिससे कुछ छिपता नहीं, मैं आकाश हूं। गंगा अपने बेटों को बहाती जा रही थी और सवाल न करने की शर्त से बंधे हुए शांतनु बस तड़प रहे थे, लेकिन जब गंगा आठवें बच्चे को लेकर नदी की ओर गई तो शांतनु से नहीं रहा गया और वो उसके रास्ते में आ गए।
12: गंगा, बस गंगा बस, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा।
13: कैसा अनर्थ महाराज? मैंने कब अनर्थ किया?
12: आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा गंगा, तुम मेरे पुत्र को ऐसे नदी में नहीं बहा सकती।
13: क्या आप भूल गए महाराज कि मैंने आपसे विवाह के लिए एक शर्त रखी थी? आपने मेरी शर्त तोड़ दी महाराज, इसलिए अब आप मुझे रोकने का अधिकार खो चुके हैं। आपका ये आठवां पुत्र मेरे साथ रहेगा और मैं इसे इसके योग्य शिक्षा दूंगी।
12: नहीं देवी नहीं, मैं आपसे
13: क्षमा करें महाराज, मुझे रोकने की कोशिश ना करें। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, इसलिए उचित समय पर आपका ये पुत्र आपके पास लौट आएगा।
14: गंगा के उस आठवें पुत्र का क्या हुआ पंचाली?
15: वही आठवें पुत्र तो पितामह भीष्म है, उन्हें धरती लोक के कष्टों को भोगने का जो श्राप मिला था वही कष्ट तो वो आज भोग रहे हैं।
14: कैसा श्राप? किसने दिया था वो श्राप?
15: पितामह पिछले जन्म में देवलोक के उन आठ वसुओं में से एक थे जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गायें चुराई थी। क्रोध में महर्षि ने उन्हें धरती लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी गंगा ने उन वसुओं को अपने गर्भ से धरती लोक में जन्म दिया और फिर गंगा में बहाकर उन्हें मुक्ति दिलाई। बस बचे रह गए आठवें वसु भीष्म। तो उन्हें देवी गंगा ने 16 वर्ष की आयु में महाराज शांतनु को सौंपते समय कहा था,
13: मैंने जो किया उसी में देवलोक के वसुओं का कल्याण था। महाराज शांतनु, आपने इस आठवें पुत्र का जीवन बचा लिया था जिसका नाम मैंने प्रभास रखा है। इसे इस धरती पर बहुत लंबा जीवन जीना है और मैंने इसे वो सारी शिक्षाएं दी हैं जिनके बल पर ये आपका योग्य उत्तराधिकारी बन सके।
14: पर पितामह, उत्तराधिकारी कहाँ हुए?
15: पर गंगा ने भी तो ये नहीं कहा था कि वो पुत्र उत्तराधिकारी होगा। गंगा ने तो बस उन्हें उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाया था।
14: ये सोचकर कितना अजीब लगता है ना पंचाली, कि हमारे कुल की कथाएं हमें नहीं पता। असल में जब से हम जन्मे, दुर्योधन के षड्यंत्रों ने कभी हमें इतना समय भी नहीं दिया कि दो क्षण माँ के पास बैठकर किस्से कहानियां सुन पाते।
16: पांडवों,
17: कौन आवाज दे रहा है हमें?
14: मैं देखता हूँ, उस नीच दुर्योधन का कोई दूत होगा।
16: वो दूत क्यों भेजेगा?
14: आपके पास हमेशा प्रश्न ही होते हैं भैया, कभी कोई उत्तर भी दे दिया कीजिए।
16: रुको भीम, ये कोई ऋषि है।
18: मैं भृगुवंशी शुनक का पुत्र शौनक हूँ। मैंने वर्षों धर्म और न्याय की साधना की है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय हो।
16: हमें आशीर्वाद दे ऋषिवर और हमारे योग्य सेवा बताएं।
18: कल्याण हो, आप सभी सूर्य देव को प्रसन्न करें। ईश्वर ने आप सभी को शक्ति अर्जित करने के लिए 13 वर्ष का समय दिया है। आप पांचों पांडव आने वाले समय में सूर्यदेव की कृपा से महान शक्तियों के स्वामी होकर धर्म की स्थापना करेंगे।
14: पर सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना हो?
18: साधना ही सूर्यदेव की शक्ति को प्राप्त करने का साधन है।
16: अवश्य ऋषिवर, हम सूर्यदेव को अवश्य प्रसन्न करेंगे।
18: मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जब आवश्यकता हो मुझे याद करना।
19: क्या हुआ मामा, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं?
18: तुम्हारे पिताश्री की बातों पर हंसी आ रही है भांजे, उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है।
19: ऐसा क्या कह दिया उन्होंने?
18: आज वो पांडवों के भक्त महात्मा विदुर को प्रवचन दे रहे हैं।

0: पांडवों के वनवास की बात पर सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इधर तात भीष्म का उबाल खाता क्रोध और उधर ऋषि मुनि और प्रजा, क्या पता कौन कब मुझ पर बरस पड़े।
1: ये तो मुझे पहले से ही पता था महाराज। आपने कैसे सोच लिया कि अधर्मी और अन्यायी का पक्ष लेकर भी आप चैन से रह सकेंगे?
0: तुम दुर्योधन को अधर्मी और अन्यायी कह रहे हो विदुर? वो हृदय से बुरा नहीं है, परिस्थितियों ने उसे बुरा बना दिया है।
1: परिस्थितियों ने नहीं महाराज, आचरण ने। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब आचरण से ही मिलते हैं। पर आपने कभी माना ही नहीं कि दुर्योधन का आचरण ठीक नहीं है, वो अधर्म और अनीति के रास्ते पर है।
0: जो हो चुका उस पर चर्चा करके क्या मिलेगा विदुर? ये बताओ कि अब क्या हो सकता है।
1: अब एक ही उपाय है महाराज, कि आप पांडवों को वापस बुलाएं और उन्हें सम्मान से उनका राज्य वापस लौटा दें। और सबसे खास बात, आप कुमार शकुनी को गांधार वापस भेज दीजिए।
0: नहीं विदुर, ये मुझसे नहीं हो सकता। जाने क्यों तुम हमेशा पांडवों के भले की ही सोचते हो, कभी मेरे पुत्रों का भला भी तो सोच लिया करो।
2: कुछ समझ में आया भांजे? क्या पता कब महाराज नींद से जागे और पांडवों के पैर पकड़कर उन्हें वापस हस्तिनापुर बुला ले।
3: नहीं मामा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तात विदुर तो जन्मे ही है पांडवों के तलवे चाटने के लिए, पर पिताश्री मेरे विरुद्ध कभी नहीं सोच सकते मामा।
2: इतने भोले मत बनो भांजे, वरना खेल बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। देखना अचानक एक दिन पांडव लौटकर तुम्हारी छाती पर सवार हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं भांजे, समय मत गवाओ, बुद्धि लगाओ। तात विदुर बार बार एक ही रट लगाते रहेंगे तो एक दिन महाराज को उनका कहा सच लगने लगेगा।
3: ऐसा कुछ होने से पहले मैं या तो तात विदुर का गला दबा दूंगा या वन में भटकते उन पांडवों का अंत कर दूंगा मामा।
2: अब आया ना रास्ते पर भांजे, पांडवों को वनवास में ही समाप्त कर डालो। उनके वापस आने के सवाल पर हमेशा के लिए मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो।
3: अरे पर ये काम होगा कैसे मामा, कैसे होगा ये काम?
2: अरे रे रे, वन में पांडव मरे ना मरे पर तुम्हारे प्रश्नों से एक दिन मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी भांजे। इतने प्रश्न कहां से हो लाते, हमें तो नहीं आते। भांजे, कब, क्या और कैसे करना है हम तुम्हें बताएंगे। हम लोमड़ी सा सोचो और बाघ सांड और क्यों।

0: मैं सूर्य भास्कर समस्त चराचर जगत की शक्ति अदिति पुत्र सूर्य, तुम पांडव भ्राताओं और पुत्री द्रौपदी के साधना से प्रसन्न हो।
1: प्रणाम सूर्यदेव।
0: विजयी भव, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हें अक्षय शक्ति प्रदान करता हूँ। ये अक्षय शक्ति वनवास में तुम भाइयों को टूटने नहीं देगी और पांचाली इस अक्षय शक्ति से तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकती हो।
1: मैं धन्य हुई सूर्यदेव, परंतु शक्ति के साथ साधन भी तो चाहिए सूर्यदेव।
0: अवश्य पुत्री, अवश्य। वनवास में तुम्हें ही अपने योद्धापतियों का ध्यान रखना होगा। पांचों भाइयों की शक्ति केंद्र तुम हो। पांडवों और अतिथियों की सेवा के लिए मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूँ। ये पात्र 12 वर्षों तक कभी खाली नहीं होगा। जब तक तुम परोसती रहोगी इसमें भोजन रहेगा।
2: ये अक्षय पात्र आगे चल के द्रौपदी के बड़ा काम आया। खैर आगे की कहानी आगे, अभी तो चल के दुर्योधन का हाल चाल ले लेते हैं थोड़ा सा, जो पांडवों से युद्ध की तैयारी कर रहा है।
3: डर गए ना मामा? ये अस्त्र शस्त्र आपके लिए नहीं है, उन पांडवों के विनाश के लिए है। ये देखिए, ये गदा, ये शूल, पाश, ये चक्र और ये खड़क देखिए मामा, और इसकी धार देखिए। और मामा ये बहुत विशेष है, मुदगर और ये चंद्रहास।
4: चंद्रहास से क्या चिड़िया मारोगे मेरे प्यारे भांजे? बेचारे शक्तिहीन पांडवों के सर्वनाश के लिए इतने भारी अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है भांजे?
3: एक तो आपकी गोलमोल बातें मुझे समझ नहीं आती मामा। अस्त्र शस्त्र ही नहीं, मैंने विशाल सेना भी बना ली है।
4: योद्धा से ज्ञानी बड़ा, शस्त्र से बड़ा है ज्ञान। शस्त्र तो केवल घायल करे, बुद्धि ले ले प्राण। समझा भांजे?
5: ऋषि पराशर के शिष्य कुशरो पुत्र परम सिद्ध महर्षि मैत्रेयी पधार रहे हैं।
6: बंद करो ये जय जयकार।
7: ऋषिवर,
6: जहाँ धर्म की सत्ता हो, जहाँ छल और कूटनीति का राज हो, जहाँ राजा अंधा हो, वहाँ एक ऋषि की जय जयकार से बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। बंद करो। महाराज धृतराष्ट्र, ये ऋषि मैत्रेय का वचन है, यदि आप अब भी सावधान नहीं हुए तो हस्तिनापुर का सर्वनाश होगा। सर्वनाश! संसार की कोई शक्ति हस्तिनापुर को बचा नहीं पाएगी।
7: ऋषिवर, क्या हुआ? ऋषिवर, ऐसा क्या हो गया? आपके इस क्रोध का कारण क्या है?
6: कारण आपको पता नहीं महाराज, या आप स्वीकार नहीं करना चाहते।
2: ऋषि का क्रोध देख के महाराज धृतराष्ट्र कांप गए। बोलते क्या, खुद ही उनके मन में चोर था। आखिर इनडायरेक्टली इस सब के पीछे थे तो वही। चोर पकड़ा जाता है तो जुबान सिल जाती है जनाब, और तब पुलिस के डंडे से भी भारी पड़ता है अपना जमीर। कभी टटोला है समीर? समय निकालिए, मजा आएगा। क्यों? महाभारत।

0: कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388 89470 या 9198886987।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84-7-10-30-9-92 या 90-7-65-65-7-50।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। बाढ़ पीड़ितों की मदद में अफसर, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सहित NDRF की टीम ने संभाला मोर्चा। हथुआ महावीरी अखाड़ा मारपीट के मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। बाढ़ में सर्पदंश की बड़ी घटना, एक व्यक्ति की सांप काटने से हो गई मौत। रात में तटबंधों की हो रही है सख्त निगरानी, तटबंधों पर पुलिस और पदाधिकारी लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरे दिन घूमते रहे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की स्वयं मदद की, पुलिस टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में मदद किया, प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, दवा और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई गई। आपात स्थिति में गोपालगंज पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, यह नंबर है 9031872299। इस पर संपर्क कर पुलिस पदाधिकारियों से बात कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में सारण तटबंध के टूटने के बाद से लगातार इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, कई गांव पानी में डूब गए हैं, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन कई जगहों पर कम्युनिटी किचन भी चला रहा है, इसके बावजूद भी कई जगहों पर बांध में लीकेज की खबरें आई। आज गंभारी में भी सारण तटबंध पर रिसाव की सूचना मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। किया। प्रशासनिक और तकनीकी टीमों ने ग्रामीणों के सहयोग से रिसाव वाले हिस्से की तत्काल मरम्मत कराई। तटबंध की लगातार निगरानी और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए। फैजुल्लापुर में सामुदायिक रसोई का भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वच्छ और पौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी का भी बोरी उठाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल गया। बताया जा रहा है कि एक जगह बांध का रिसाव शुरू हो गया था जिसमें पुलिस अधीक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे और खुद बोरी उठाकर बांध के रिसाव को बंद करने में जुट गए। पुलिस अधीक्षक को बोरी उठाता हुआ देखकर स्थानीय लोग भी इस अभियान में हाथ बटाने लगे और जनता के सहयोग से पदाधिकारी और मजदूरों ने मिलकर वहां रिसाव को तुरंत बंद किया। पुलिस अधीक्षक के बोरी उठाने वाले वीडियो और फोटो को लोग सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पुलिस अधीक्षक की बड़ी तारीफ कर रहे थे। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसको लेकर आज गोपालगंज के एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने भी इलाके में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच दवाएं और खाद्य सामग्री इत्यादि का वितरण किया। मुखिया रमावती देवी और धर्मराज प्रसाद ने भी जरूरतमंदों में राहत सामग्री का वितरण किया। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह पिछले दो दिनों से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। एमआईएम के नेता अनस सलाम भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर जरूरतमंदों की मदद में लगे रहे। जदयू पार्टी की तरफ से भी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल और तमाम पार्टी के नेता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जरूरतमंदों के बीच सहायता पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में शीतलपुर बांध टूटने के बाद गंभारी में भी घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। सैकड़ों लोग घरों में फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम आज पूरे दिन लगातार लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही थी। एनडीआरएफ के जवान लोगों को किसी देवदूत से कम नहीं लग रहे हैं। जो लोग इस भीषण बाढ़ में अपने छतों पर फंसे हुए हैं या कहीं ऊंचे स्थान या पेड़ इत्यादि पर चढ़कर शरण ले रखे हैं, उन्हें एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। वहीं गोपालगंज के सांसद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपदा राहत की यह राशि 9 अक्टूबर तक लाभुकों के बैंक खाते में भेजे जाने की बात उन्होंने कही। सांसद ने कहा कि प्रभावित परिवारों और अधिकारियों से उन्होंने हालात की जानकारी ली है और हर संभव सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। सरकार स्तर पर भी लगातार कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम के साथ ही जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। आरोप है कि पुलिस के वहां से हटने के बाद दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। अब इसमें थानाध्यक्ष के बयान पर 10 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। थानाध्यक्ष मोहम्मद सोएब आलम की ओर से दर्ज स्वलिखित बयान के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद कर केस दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में विकास कुमार, धनु कुमार सिंह, संदीप कुमार सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, धीरज कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह, आजाद सिंह, सचिन सिंह, अभिजीत कुमार और यशवंत सिंह का नाम शामिल है। सरकारी कार्य में बाधा और विधि व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में पुलिस ने इन आरोपियों पर केस दर्ज कर और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इधर हथुआ में महावीरी अखाड़ा के जुलूस की तैयारी के दौरान हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर मोड़ के पास मंच तैयार करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते मामले में मारपीट हुई और घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में हथुआ थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस के अनुसार 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि 27 सितंबर की रात में महावीरी अखाड़ा जुलूस के बाद 28 सितंबर को मेला का आयोजन होना था। इसी को लेकर मंच के पास कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 के अंतर्गत विभिन्न खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं उत्साहपूर्ण एवं खेल भावना के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों के बालक और बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन भी किया। खो खो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। बताया जा रहा है कि खो खो में बालक और बालिका वर्ग के अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। बालक वर्ग अंडर 14 में डीएवी पब्लिक स्कूल था में प्रथम और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगमलवा था में द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर 19 में था में हाई स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग अंडर 14 में सुल्तानपुर हाई स्कूल प्रथम तथा डीएवी पब्लिक स्कूल था में द्वितीय। अंडर 14 में मुखी राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था में प्रथम तथा डीएवी पब्लिक स्कूल था में बालिका द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर 19 में डीएवी पब्लिक स्कूल था में बालिका प्रथम तथा एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज द्वितीय स्थान पर रहा। गंडक नदी से आई भीषण बाढ़ के साथ अब पहाड़ी सांपों का कहर भी शुरू हो गया है। अब तक दर्जनों लोग सांपों के शिकार हो चुके हैं। आज इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के बांसघाट मसूरिया गांव में 72 वर्षीय धर्मनाथ राय को पहाड़ी सांप ने डस लिया। तुरंत परिजनों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन और लोगों ने भी सांपों से बचने की अपील की है और सर्पदंश के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाने की राय दी गई है। सर्पदंश की घटना से भी लोगों में दहशत का माहौल है। पानी में बहकर आ रहे सांप जहां कहीं भी सूखा स्थान या सुरक्षित स्थान घर इत्यादि देखते हैं उस पर चढ़ जाते हैं और घर में रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है। सारण तटबंध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा देर रात्रि तक सघन अनुश्रवण एवं स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के साथ तटबंध के विभिन्न संवेदनशील स्थलों और ढालों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया गया। इस क्रम में जहां कहीं मामूली सीपेज अथवा बाइलिंग की स्थिति पाई गई वहां तत्काल फ्लड कंट्रोल डिवीजन की टीम को आवश्यक सुरक्षात्मक एवं मरम्मती कार्य कराने के निर्देश दिए गए। इसके आलोक में टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित स्थलों पर आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। प्रशासन द्वारा तटबंध की सतत निगरानी बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों और तकनीकी टीमों को निर्देशित किया गया है कि तटबंध की स्थिति पर लगातार नजर रखें। किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति अथवा जल दबाव से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य मुख्य तटबंधों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखना है तथा संभावित जोखिम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। देर रात तक प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय टीम के द्वारा तटबंध के विभिन्न हिस्सों का अनुश्रवण किया जा रहा है। गोपालगंज के प्रसिद्ध राजा दल को भव्य बनाने के लिए लगातार मजदूर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार राजा दल ने अमेरिका के राम नारायण मंदिर का संरचना तैयार करना शुरू कर दिया है। दिन रात यहां कारीगर मंदिर को बनाने के लिए काम में जुट गए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य तरीके से राजा दल नवरात्रि में लेकर राजा दल दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इस बार अमेरिका के प्रसिद्ध राम नारायण मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सुरक्षा और अन्य लिहाजों से भी इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से श्रद्धालु आए और दर्शन कर सुरक्षित रास्तों से यहाँ से निकल सके। पुलिस दीदी अभया ब्रिगेड की टीम के द्वारा लगातार शैक्षणिक संस्थाओं एवं हॉस्टलों इत्यादि के आसपास निगरानी रखी जा रही है। पिंक कलर की स्कूटी और हेलमेट लगाए अभया ब्रिगेड की पुलिस दीदी लगातार शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जाकर बच्चियों छात्राओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। इस दौरान आज महाविद्यालय कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के पास दर्जनों अभया ब्रिगेड की पुलिस दीदी टीम पहुंची और छात्राओं महिलाओं से बातचीत की, उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें आश्वस्त किया और किसी भी तरह की समस्या पर पुलिस से सहयोग करने के लिए हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर नगर थाना क्षेत्र के बसडीला पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उनके हितार्थ, सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाएं जैसे वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, बिहार माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007, नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 और सामुदायिक मध्यस्थता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के कार्यालय में भी जन सुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने उपस्थित जनता की समस्याओं को सुना और उसे संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। हथुआ में महावीरी जुलूस के दौरान हिमांशु यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी राजकुमार गोण है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। इस कांड में आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। अन्य आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। रिफॉर्म उत्सव के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में हिंदी पखवाड़ा 2026 का समापन हुआ। इस दौरान हिंदी दिवस पर समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने की। कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र कुमार यादव माननीय सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री यादव ने विकसित भारत में राजभाषा हिंदी का योगदान विषय पर अपने सारगर्भित व्याख्यान में राजभाषा हिंदी के महत्व तथा विकसित भारत के निर्माण में हिंदी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
6: बाढ़ पीड़ितों की मदद में अफसर, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सहित एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा।
5: हथुआ महावीरी अखाड़ा मारपीट के मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। बाढ़ में सर्पदंश की बड़ी घटना, एक व्यक्ति की सांप काटने से हो गई मौत। रात में तटबंधों की हो रही है सख्त निगरानी, तटबंधों पर पुलिस और पदाधिकारी लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
14: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपाल गोपालगंज। कॉल करें 9452-11001।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
17: एक रंग इश्क का।
18: पिछले पन्नों में आपने जाना कि किस तरह मीनल एक सीधी सी बात को इनकार करने गई थी और डेविड के सामने आते ही उसका इनकार इकरार में तब्दील हो गया। पेंटिंग का जो काम वो गाये बगाये किया करती थी उसमें पूरी शिद्दत से कामयाब होने को मचल उठी थी। क्या इस पेंटिंग कंपटीशन में कोई और तस्वीर भी उभरने वाली है? ये तो तभी मालूम होगा जब पढ़ेंगे अगला पन्ना इश्क का। हाय, आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। पेंटिंग कंपटीशन का नया बखेड़ा जो खड़ा हुआ था उससे मीनल परेशान थी। तो अमिया का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को पार कर चुका था। मीनल की बातों से वो इतनी ज्यादा जज्बे में आ गई थी कि आज वो कई पेंटिंग आर्टिस्ट को पीछे छोड़ सकती थी। आज अमिया के मन में उसके जैसा कलाकार दुनिया में था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीनल इस उलझन में थी कि अगर पेंटिंग कॉम्पिटिशन में कुछ बनाना हुआ तो वो क्या बनाएगी। पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, आर्ट्स के अलग अलग सेक्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इतिहास और अर्थशास्त्र के भी होंगे जिन्हें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पेंटिंग्स में, पर देखने वाले तो कई सेक्शन से आएंगे। कुछ उसके हिंदी सेक्शन वाले भी होंगे। उस शिवानी से भी तो अच्छी पेंटिंग बनानी होगी। ये स्कूल का कंपटीशन तो है नहीं कि जहाँ आम, केला, अमरूद बनाया और टीचर ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बनाई हो। यहाँ तो कई दिग्गज होंगे। हफ्ता भर यही सब उधेड़बुन में रही कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ अच्छा बनेगा या नहीं। बीच बीच में आंखों में रखी हुई मीनल और शिवानी की जलन भी एक दूसरे से टकरा जाती थी। पर अब शिवानी पहले की तरह मीनल से बदतमीजी से बात नहीं करती थी, थोड़ी शांत सी हो गई थी। पर क्या ये किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा था? क्योंकि शिवानी इतनी जल्दी सुधर जाए, अपने ऊपर हुए अपमान को भूल जाए, ऐसी तो लड़की नहीं थी। रही बात मीनल की तो वो बस वर्तमान में जीना पसंद करती थी। उसके लिए शिवानी अभी कुछ कर नहीं रही थी तो सब सही था। इस हफ्ते के दौरान मीनल जब डेविड के सामने आती तो एकदम शांत दिखने की कोशिश करती और उसके जाते ही कुछ अलग से ख्यालों में खोई सी रहती थी। डेविड ने भी कुछ कुछ बातें महसूस की थी कि मीनल आजकल कुछ खामोश सी है। इस तरह वक्त गुजरा और वो कंपटीशन की सुबह आ गई। सारे प्रतिभागी अपने अपने रंगों के साथ मैदान में पहुंच चुके थे। पूरे कैंपस के गार्डन साइड पे जहां तहां लोग अपने बोर्ड और पेंट के साथ थे। जहां मीनल की दुविधा क्या बनाए इस बात की थी, वहीं अमिया इस बात से परेशान थी कि कहीं उसकी पेंटिंग की कोई कॉपी ना कर ले। अमिया ने बड़ी ही मेहनत के साथ बारीकी से अपने लिए कोना ढूंढ लिया था, पर आज उसका जज्बा किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी था। पेंटिंग कंपटीशन को जज करने के लिए कई सुप्रसिद्ध पेंटर भी आए हुए थे। डेविड, जो खुद भी पेंटिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था, आज जजेस के साथ ही बैठा था। शिवानी ने पर्वत, नदियाँ वगैरह बनाने का सोचा, जो काफी अच्छे से उसे आता था। वहीं मीनल ने सोचा कि वो दुनिया की तस्वीर बनाएगी, उसमें अपने रंग भरने की कोशिश करेगी। उसने पहले पेपर को अपने पसंदीदा लाल रंग से कवर किया, रंग हल्का ही रखा ताकि रंग चुभने से ज्यादा निखारने का काम करे, और फिर ग्लोब बनाने लगी। उसने ब्रश की जगह अपनी उंगलियों को तरजीह दी। उंगलियों के सहारे ही हल्का और गाढ़ा रंग भरी जा रही थी। माहौल वहां का पूरा शांत था। सब अपनी अपनी चित्रकारी में लगे हुए थे। जजेस भी अपनी बातों के बताशे आपस में ही घोल रहे थे। रह रहकर डेविड की तारीफें चल रही थी कि उसने ये जो आर्ट को मॉडर्न रंग देने की कोशिश की है ये बहुत ही सुंदर है। डेविड खुश था। उसने जजेस को अपने साथ उसके केबिन में चलने की गुजारिश की। उधर शिवानी ने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया और फिर अपनी सहेलियों के साथ बाकियों की कलाकारी देखने में मसरूफ हो गई। बड़ी ही अद्भुत थी सबकी चित्रकारी, पर शिवानी का निशाना कुछ और ही था। उसने देखा कि मीनल अपनी पेंटिंग को छोड़कर अमिया के पास खड़ी होकर उसकी पेंटिंग देख रही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनल की पेंटिंग के पास पहुंच के उसी के ब्रश से इधर उधर रंग छिड़क दिया और फिर कपट भरी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। और दूसरी तरफ मीनल अमिया से बात करने में मसरूफ थी। अमिया बड़ी ही खुश थी और उसने मीनल को बताया कि वो किसी पुराने बादशाह की तस्वीर बना रही है अंगूर खाते हुए। हालांकि उसकी पेंटिंग अभी अधूरी थी, पर उसकी अधूरी तस्वीर को देख के भी कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। मीनल ने अमिया के हौसले की तारीफ की और अपनी पेंटिंग के पास आ गई। यहाँ आते ही उसके होश फाख्ता हो गए थे।
15: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
0: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
15: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
0: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
15: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
0: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
15: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
14: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
19: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
19: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
15: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
14: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
15: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
14: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
15: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
14: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
15: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
14: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
15: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
14: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
15: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
14: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
15: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
14: संपर्क करें 84710-30992 या 97765-65750।
21: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
22: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
21: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
22: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
23: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
22: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
23: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
22: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
23: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
17: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
18: ये क्या हुआ, किसने किया ये?
0: उसका मन अब रुआसा सा था, पर जो हार जाए वो मीनल नहीं थी।
18: मीनल ने सोचा कि वो नई पेंटिंग बना लेगी, पर तभी उसकी नजर उन तमाम रंगों पर पड़ी जिसकी टेढ़ी टेढ़ी लकीरें कुछ अलग सा ही बना रही थी। उसने तमाम लकीरों को अपनी उंगलियों के सहारे एक अलग रंग दिया और कुछ ना बनते हुए भी रंगों की एक खूबसूरत लकीर बन गई। तमाम जजेस अपनी नजर से सबकी तारीफ करने लगे, सभी की तस्वीरों को देखा। अमिया ने अपनी पेंटिंग बहुत ही उत्साहित होकर जजेस को दिखाई और जजेस से तारीफें सुनकर वो खुश से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अंगूर खाते हुए बादशाह की जो तस्वीर अमिया ने बनाई थी उस पर जज साहब ने कहा, बहुत खूब, ये जो आसमान से लटके हुए गुब्बारे आपने बनाए हैं ना, ये कुछ खूब ही है। बेशक आप पेंटर नहीं है पता चलता है, लेकिन आपका ये जो ख्याल है दुनिया के नजरियों को उल्टा करने का, ये काबिले तारीफ है। अमिया सदमे में थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने तो अंगूर खाने वाले बादशाह बनाए थे। ये बात सुनते ही मीनल की तो हंसी छूट गई, पर उसने खुद पर काबू करते हुए अमिया को शाबाशी दी। फिर सबकी तस्वीरों पर दो दो बात करते हुए जजेस चले गए और उन्होंने विनर्स की घोषणा कर दी। मीनल को उसके रंगों के अद्भुत इस्तेमाल के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज मिला और बाकी तीनों पुरस्कार पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के ही हाथ लगे। मीनल को आज के हुए हादसे ने एक अलग ही जोश दिया था। आज की बात ने उसे जिंदगी का एक गहरा सबक सिखा दिया था कि जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों तो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन सब में डेविड का साथ उसके लिए खास रहा। इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन ने मीनल में एक नया जोश और जज्बा भर दिया था। मीनल बहुत खुश थी। हल्की सी शाम थी जब डेविड मीनल के पास आया। उसने मीनल को शाबाशी दी और उसे कैंटीन में ट्रीट देने की बात भी की। मीनल उसकी दोस्त जैसी थी, हालांकि दोनों की उम्र में फर्क अच्छा खासा था, पर फिर भी ये दोस्ती खास थी। मीनल ने भी इनकार नहीं किया और डेविड ने उसे कहा कि वो अमिया और शिवानी को भी लेकर आए। शिवानी? मीनल ने मन ही मन सोचा, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो शिवानी के पास गई और जाकर बोली कि डेविड सर ने आपको भी बुलाया है कैंटीन में ट्रीट के लिए। शिवानी बड़े ही दिल से मीनल का हाथ पकड़कर बोली, मीनल मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की जबकि तुमने कभी भी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। मैंने आज भी तुम्हारी पेंटिंग पर बात करने की कोशिश की। ये सुनते ही मीनल थोड़ा चौंकी, पर खुद को संभालते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, पुराना सब भूल जाते हैं एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। पीछे से अमिया ने मीनल के कान में बोला, बच के रहना, नागिन है ये, डसेगी जरूर। फिर शिवानी ने अमिया की तरफ देखकर बोला कि अमिया तुम भी मुझे माफ कर दो ना।

0: देगा।
1: पर फिलहाल जो पन्ना मीनल की डायरी में उस दिन का था वो कुछ ऐसा था। तमाम रंग हसरत का मैंने लुटा दिया, एक रंग लाल ने मुझको बना दिया। क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों खुद में हमने खुद की दुनिया बना लिया। डेविड से मीनल के कुछ धड़कते जज्बों की बातें अभी बाकी हैं, और ये पन्ना भी पलटा जाएगा तब जब पढ़ेंगे और रंगेंगे एक रंग इश्क का।
2: एक रंग इश्क का।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

0: धक जिया करे जाने क्या पिया करे ओ धक धक जिया करे जाने क्या पिया करे।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

जमाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-648-652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध

0: है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 3580 76 या 95 999 27 982।

0: संदेश में कहा कि यह दिवस महात्मा गांधी के आदर्शों और मूल्यों के प्रति समर्पण का अवसर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर देश भर में और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पटना स्थित गांधी संग्रहालय में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बापू टावर में भी महात्मा गांधी से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इधर इस अवसर पर पटना के बेऊर सहित राज्य के 11 जिलों में आजीवन सजा काट रहे 44 बुजुर्ग बंदियों को रिहा किया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवा में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। इस मौके पर राजधानी पटना समेत राज्य भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में जलस्राव के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और गंगा सहित सभी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के निचले इलाकों में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेपी गंगा पथ पहुंचकर गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने अगले 24 घंटे राज्य के लिए अहम बताते हुए विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। सारण जिले के पानापुर प्रखंड के सरोजा भगवानपुर के पास बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। जिले के मकेर, तरैया, दरियापुर और परसा प्रखंडों में बाढ़ से 1.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। बाढ़ के हालात को देखते हुए वायुसेना ने राहत कार्य तेज कर दिया है। जिले के पानापुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत माधोपुर हजारी पंचायत के छरकी गांव के पास रिंग बांध टूटने से 300 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं वैशाली जिले के तटीय और निचले इलाकों में गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राघवपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा नदी का पानी प्रवेश कर गया है। प्रखंड के 15 सरकारी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इधर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्थिति को गंभीर मानते हुए गंडक सहित सभी नदियों के तटबंधों पर विशेष निगरानी बरतने का निर्देश दिया है।
2: गंडक में जल स्तर काफी बड़ा हुआ है और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऊपर पश्चिम चंपारण से लेकर मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली तक में 5 जगह गंडक में आज तक के इतिहास में सबसे अधिक जलस्राव आया है। ये स्थिति है अभी, क्योंकि गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। अब जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो उसका बैक वाटर इफेक्ट गंडक जैसे नदियों पर भी पड़ता है कि उनका नदी का ऊंचा स्तर रुक जाता है। वो सबसे खतरनाक है जो पिछले 5-6 दिनों से गंडक में चल रहा है।
0: इधर गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। डुमरिया घाट में पानी 1 फीट नीचे उतर गया है। वहीं बैकंठपुर के शीतलपुर में रिंग बांध टूटने से 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाढ़ के बाद तटबंध टूटने की जांच कराई जाएगी।
3: यहाँ के स्थानीय लोगों का डिमांड है कि हमारा ये बकहा गांव हो, चाहे हमारा ये बंजरिया गांव हो, चाहे सिकलपुर हो, चाहे हमारा महारानी उग्रसेन हो, ये जो बांध हमारे जो नदी के पेट में है, उन सभी लोगों की सुरक्षा हेतु सबका आग्रह है इसके लिए प्रोटेक्शन बांध बनाया जाए। इसको लेकर के भी बाढ़ के बाद हम अधिकारियों की टीम को बुलाएंगे, साथ साथ सर्वे कराएंगे और प्रयास करेंगे कि बांध बने, लेकिन अभी हमें आपदा से निपटना है और सबको मिलकर साथ काम करना है।
0: प्रदेश में 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त प्रारंभिक अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। शिक्षा विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में यह निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2015 कट ऑफ तिथि होगी। इससे पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED की अनिवार्य योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक अंतिम अवसर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक कुमार निशांत विवेक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समझ।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के बीच के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 तलाक कानून ने कैसे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है।
4: भारत में एक मुस्लिम महिला को केवल 3 बार एक शब्द बोलकर तलाक दिया जा सकता था, बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी कारण बताए और बिना किसी प्रभावी कानूनी उपाय के। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 ने तत्काल 3 तलाक को अमान्य घोषित किया और इसे अपराध बनाया। इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। यह सुधार केवल तत्काल 3 तलाक पर रोक लगाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके बाद महिला के जीवन और अधिकारों की भी व्यवस्था करता है। इस सुधार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दृष्टिकोण भी प्रतिबिंबित हुआ कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हर भारतीय महिला को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
5: 3 तलाक, कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही, अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है।
4: मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक कानून का खुले दिल से स्वागत किया है। महिलाओं का मान

0: है कि इस कानून ने उन्हें बराबरी और आत्मसम्मान का एहसास कराया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक पे जो कानून बनाया है, ये सारे देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने उपकार किया है। आज मुस्लिम महिलाएं अपने आप को गर्व महसूस कर रही हैं और इस समाज में सर उठा के चल रही है। और
2: हमारे इस्लाम में जो तलाक का सिस्टम था उसके बरक्स जाकर लोगों ने इसे एक शोषण का हथियार बना लिया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नशे की हालत में, गुस्से में या जरा जरा सी बात पे जज्बाती होकर लोगों ने 3 तलाक कर दिया, औरतों को बेसहारा कर दिया। मुस्लिम औरतों के तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ।
0: सरकारी आंकड़ों के अनुसार कानून लागू होने के एक वर्ष के भीतर 3 तलाक के दर्ज मामलों में 82% की कमी दर्ज की गई। संवैधानिक संरक्षण उन महिलाओं तक भी पहुंचा जिन्हें लंबे समय से कानून के संरक्षण से वंचित रखा गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
3: पटना में राइजिंग बिहार इन्वेस्टर समिट 2026 का आयोजन किया गया। इसके तहत ऊर्जा और सौर ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने नवंबर 2026 तक 5,00,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। बेगूसराय जिला आज अपना 54वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से प्रभात फेरी और साइकिल रैली निकाली गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाने में शराब से जुड़े मामले में केस तथ्यों में गड़बड़ी करने के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों सहित एक चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी शीघ्र। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 2,00,000 करोड़ के पार। दैनिक भास्कर ने एशियन गेम्स से जुड़ी खबर पर लिखा है, हॉकी में आखिरी 49 सेकंड में हारा पाकिस्तान, भारत फाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में जलस्राव के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और गंगा सहित सभी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। और प्रदेश में 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त प्रारंभिक अपर शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम

0: राज रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते
1: मैम, मुझे गीत सुनना था।
2: बिल्कुल, पहले नाम बता दीजिएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
2: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
2: बाबू का, अर्जित बाबू का बर्थडे है ना?
1: हाँ हाँ हाँ जी है, उसी लिए तो मैं फोन लगाया हूँ। तो उसके लिए कोई बढ़िया सा बर्थडे गीत चला दीजिएगा और सुनाना सभी लोगों को, जितने भी हमारे रिमझिम के श्रोता है सभी लोग।
2: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है, नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, कॉल किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने की गम, ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने की गम, वो वक्त गुजर गया जब तेरे दीवाने थे हम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।
1: जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी अच्छा हूँ, मैं कमरान रफीद।
1: हाँ जी,
0: विलेज पकड़ी सुल्तान से फिलहाल दिल्ली में हूँ। और आपका?
1: जी मेरा नाश्ता हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ मेरा भी हो गया, तबियत ठीक है?
1: जी तबियत ठीक है,
0: बहुत बढ़िया। रखिए काम, इधर तो धूप हुआ है, हवा भी चल रहा है।
1: हाँ दिल्ली में?
0: हाँ दिल्ली में, दो दिन तीन दिन पहले बारिश हुई थी। जी बारिश हुआ था 26 तारीख, और उसी दिन मेरा पेपर था बैंक का। हाँ गया था फिर पेपर देने बैंक का, एस बी आई का।
1: पेपर गया कि नहीं?
0: हाँ पेपर अच्छा हुआ है मेरा। तो सर रिजनी में थोड़ा छोटा है, ज्यादा नहीं छोटा है।
1: अच्छा।
0: पर अच्छा हुआ, हाँ और सब बढ़िया है। उधर का मौसम मौसम कैसा?
1: जी हमारे यहाँ तो हल्की धूप है, हल्का हवा चल रहा है, काफी मतलब सुहाना मौसम बना हुआ है।
0: सुहाना मौसम है? नहीं इधर तो खूब सुहाना नहीं बोला जाएगा, मतलब ठीक है, सही है इधर का मौसम। जी जी जी, तो आज मेरे दोस्त है उमा शंकर भाई, उनका आखिर जन्मदिन है। नाम है जी जी, तो उसी का बर्थडे गाना सुनूंगा। वो गाना है ना, मेरा भी नाम होता डब्लू बब्लू मैं खाता
1: हूँ।
0: रफी का आवाज में ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा, डेडिकेट उसी को है और आपको है। और चलिए ठीक है, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86 034 48 652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीन 90.4 FM में।
12: क्या खबर है?
11: जी हमारे खैरियत तो सही बार हुआ, बताए रहो कैसे
12: अलहमदिल्ला हम ठीक बानी। तुम नाश्ते के टाइम खत्म, खाना होना हो?
11: लंच हुई 2 बजे के बाद।
12: अच्छा वॉइस कब तक चले लगे?
11: कौन योर वॉइस योर चॉइस के सो?
12: हाँ
11: वो तो स्टार्ट हो गया ना।
12: अच्छा और सब?
11: और सब ठीक बावे।
12: और गाना सुनेंगे?
11: बिल्कुल बता दी कौन सा गाना सुनेगा।
12: वादा किया हंसाने का तूने रुला दिया, जा सजना तुझको बुला दिया।
11: ओके और गाना किसी को सुनवाएंगे वो?
12: सबसे पहले आपको और सुनने वाली ऑल लिसनर।
11: ओके जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजिम 91.4 FM।
12: थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम अस्सलाम।

0: नमस्ते
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
0: मैम मैं फिर भी बोल रही हूँ।
1: जी प्रभु जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: हाँ
1: कैसी है आप?
0: ठीक हूँ, अपना बताइए।
1: मैं ठीक हूँ, आप पर आप ठीक नहीं लग रही है।
0: मैं भी ठीक ही हूँ।
1: और सर आपकी बहन कहाँ है, वो ठीक है?
0: वो तो ठीक है।
1: अच्छा
0: मनोरमा मैम कैसी है?
1: वो भी ठीक है।
0: आप ठीक है ना? तो क्या सुनना है हमको?
1: बिल्कुल बताइए।
0: जो भी नटियल की आवाज में तेरी मीठी मीठी मैं तो गर्ल सुनिया। तेरी मीठी मीठी मैं तो गर्ल सुनिया।
1: और गाना किसी को सुनाएंगे?
0: और डेडिकेट है आपको, मेरी बहन को मनोरमा मैम और सोनू सर और दूसरे कृष्णा हम सभी को।
1: तो प्रभु जी आपके गाने को प्ले करते हैं।
0: तो मैम थैंक यू,
1: वेलकम। सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें।

0: 9999-66-999।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: सलाम में।
4: वालेकुम अस्सलाम।
5: रेशमा बोल तो खान तो
4: है। हाँ जी, क्या हाल चल बा?
5: ठीक बा, आपको
4: कहूँ हम नहीं होगी ठीक बावे।
5: कहाँ रहो तुम? जी बात हो बात नहीं हो।
4: हाँ हाँ, हमने की नाश्ता पानी हो गई बार होगा बताए। अभी कहाँ होता है?
5: अभी कहाँ होता बता दो, तुम कहाँ से लगे?
4: बता दी ना हंसते। अच्छा तो कहाँ हो गई गुदरा? यो तो बिछावल एकदम सील जरूरी बावे। सब का
5: सब ठीक बावे।
4: हाँ सब ठीक
5: बा।
4: हमारे तो तबियत ठीक बार होगा बताए, रोवा लोग सब ठीक बन लो। चलिए कोनो बात ना, तो बता दी आज कौन सा गाना सुने?
5: आज खाना काम से कौन
4: सा
5: उसकी बात उसे पूछो, बहुत नदियों से पूछो, उनको पता है मेरा नाम।
4: हाँ हाँ है। अब गाने के ऊपर सुना हो गए
5: रानी वाली
4: जी तरह और गाना प्ले करता नहीं सुनते रही रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: नमस्ते
1: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: गोपाल भैया बोल रहा हूँ, ग्राम का गवासा, जिला गुना।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, फसल की कटाई चल रही है मक्का की।
1: अच्छा जी, फसल तैयार है?
0: और हाँ, तैयार है। और वो क्या है, नवरात्रि आने वाले हैं और धूप भी बहुत तेज पड़ रही है।
1: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं।
0: और क्या,
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
0: दिल फिल्म का सुनना है, मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है, कोई जाए यारा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल को गा, ये वाला गाना।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी मकसूदनगढ़ से, जीतन ढाकड़ जी, और आपके लिए भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल, तो गाना आपका प्ले करते हैं
0: जी। कब तक आएगा जी गाना?
1: ये आपको आज शाम को नहीं तो कल शाम को मिल जाएगा।
0: ठीक है,
1: ओके। रेडियो रमचमा कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up. Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: हाँ मैम, आपका भी बहुत स्वागत है जी।
11: जी, नाम बताइए अपना।
10: मेरा नाम
11: जी
10: अजीत कुमार साहू, उर्फ हिटलर बिहारी, हरियाणा से।
11: जी, क्या हाल चाल है अजीत जी?
10: बढ़िया है मैम, अपना बताइए जी।
11: मेरा भी ठीक है। हाँ हाँ, खाने पीने हो गया।
10: और सब बताइए?
11: और सब समाचार तो ठीक बानी, सब बताइए।
10: अब ठीक है बानी,
11: गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
10: गाना सुनने के बाद गाना था मेरा, बहुत दिन तक करी जाता है, मैं सुनता हूँ हमेशा उसको, कयामत कयामत कयामत।
11: गाना काफी बढ़िया है।
10: हाँ,
11: तो आप गाना ये किसी को सुनवाएंगे जी?
10: हाँ सुनवाएंगे,
11: बता दीजिए।
10: आपकी मैम मुरमना मैडम जयकर कुशवाहा, पूरे दिन परिवार को।
11: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
10: अभी बजाओगे?
11: नहीं नहीं, अभी तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, सुनते रहिए।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, हमको गाना सुनना है।
1: बिल्कुल, पहले अपना नाम बता दीजिएगा।
0: सोला देव बोल रहे हैं, पान दादा से।
1: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हिंदी गाना सुनवा दीजिए, या तुझे पता है गुलकन मेरे दिल पर आने वाला
1: है। अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: गाना मेरा लड़का है, उन्हें सुनना है।
1: अच्छा,
0: बड़ा लड़का है गुलशन, छोटा लड़का है राजा, एक मेरी बेटी है सांजना।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम, ठीक है?
1: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है?
0: हाँ, हम लोग तो ठीक है, बैलेंस नहीं था इसलिए नहीं कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
0: तब खाना निकाल लिए?
1: हाँ, हम लोग का हो गया है।
0: चलिए, आप लोग का सब लोग ठीक है ना?
1: जी जी, सब कुछ ठीक है।
0: चलिए, हम भी ठीक है।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: मैं पिक इट अप।
7: हेलो,
6: मैं पिक योर फोन अप।
7: हेलो,
6: पिक इट अप।
7: हेलो,
6: मैं पिक योर फोन अप।
7: हेलो,
8: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
10: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला को नाम मध्य प्रदेश से।
11: जी क्या हाल चाल है आपका?
10: बस बढ़िया है, सोयाबीन कट रही है और आपका रेडियो सुन रहे हैं।
11: अच्छा
10: जी,
11: तो कौन सा गाना सुनिएगा?
10: जी मैडम जी, सिंगर का नाम है बादल।
11: और गाने की बोल?
10: और गाने के बोले तो तुझे दिल में डोले, मेरे दिल की धड़कन डोले।
11: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
10: जी मैडम जी, भाटी मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी, जितेंद्र कर दिया, अमर सिंह भील है, इन सभी, और हमारे छत्नारायण गहलोत है उज्जैन से, ये सभी गाना उनको डेडिकेट रहेगा।
11: जी तो आपका
10: मजे का ये गाना मैडम जी,
11: ये आपको गाना आज शाम को नहीं तो कल शाम को सुनने को मिलेगा।
10: ठीक
11: जी, रेडियो रूम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: राम राम साहब गुनाह से
1: जी।
0: और गाना
1: बिल्कुल बताइए, कौन सा गाना?
0: ये गोटे डाल लेगा।
1: कौन सा
0: गोटे डाल लेगा जब निकलू जब डाल के,
1: समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए।
0: धर्म काटा फिल्म का।
1: हाँ
0: हाँ यही गाना, ये गोटे डाल लेगा।
1: अच्छा अच्छा और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सबको सुनवाना, मैं तो हिंदुस्तान जीते जीते।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
7: जी। नमस्कार, क्या हाल चल रहा जी?
8: जी हमारे तो ठीक पर हुआ, बताइए रोगा की
7: रोगा ठीक रहा तो हम ही ठीक रहे सब महाराज।
8: अच्छा जी, तब अभी
7: कहा तो सवारी तो नहीं है महाराज।
8: अच्छा,
7: तो हम कौन ही कहा है ना, तो निकटराई महाराज और विचार बेरा कहीं भारती जी टकरा जाये।
8: अच्छा जी,
7: अरे कभी आई महाराज घूमे न करी, अभी खाली घोषाले का जो रहे,
8: कभी मौका मिली तो जरूर आये जी।
7: आये बने की ना कहू ये कभी
8: दिल्ली
7: जी?
8: ना कभी दिल्ली तो नहीं ही आये।
7: कहीं हो सका था कि किसी रीजन से आये होके, मैंने करी ऐसा कुछ नहीं है।
8: ना ना ना, दिल्ली कभी नहीं ही गई, खाली बढ़िया हो तो। और वो बता दिया कौन सा गाना सुने?
7: गाना गाते महाराज साइया भाई बद्दू मरी के है फूल, मैंने गायिका के नाम हो रहे थी होता कि सबरे सहेलिया के भैया भाई साइया भाई लड्डू मरी के फूल, ऐसे ही कुछ गाना बते जाने।
8: हाँ,
7: गुलरी के फूल
8: गाना बा।
7: हाँ, मैंने याद रुआ था लेकिन मिस्टेक और सब नहीं, ये सब भोजपुरी को ज्यादा ध्यान देवे नहीं हूँ हम। तो ग्यारह साल से पहले रोजा के लेडी गेट हुआ उनको मनोरमा जी के, रानी मुखर्जी के, सब कोई को सुना दे जी के, सगीर भाई के, अहमद भाई के, और अख्तरी जी, कमरान भाई, रुमिना जी, सलनम जी, उसके बाद मुकेश भाई बारे हैं, गाटा भाई बारन, सन्यासी बाबा बारन, सभी समीर भाई बारन, सोनू भाई बारन। आजकल सोनू भाई के थोड़ा अथी हो गल बार, माथा टेकत नहीं खन जाते माता रानी के दरबार में। तो सब कोई को सुना दे हैं और गाना प्ले करी ताकि हम इनका जगह पर निकल जाये।
8: गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहे रेडियो रंजन 91.4।
7: जी नमस्कार।
8: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसे
1: ठीक बने। डेढ़ दिन हो गए
0: अच्छा जी,
1: कोनो दिक्कत
0: ना? ना कोनो दिक्कत नहीं, हम के कहे दिक्कत होगी।
1: ठीक
0: शुरुआत वाला मनोरमा जी रिकॉर्ड पे नहीं आए, एबरा वाला हम करता है। सब हाल चाल बताई और सब ठीक बा?
1: तो
0: चलते बा मनोरमा जी, शुरू कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी बा। जन रो वाला चुटकुला भेजे नी, बहुत मजेदार होला। मस्ती मजाक ना होके तो उसको
1: कैसे
0: बिल्कुल बताइए, आज कौन से गाने के फरमाइश का?
1: आज खुशबू सिंह नया
0: गाना के बोल बता दी।
1: आज कोई छोड़ दे कविता सागर तो होगा अभी खुशबू सिंह का आएगा, खुशबू सिंह का बजा दिया
0: जी।
1: डेडिकेट रही भारती जी के, मनोना जी के, हमारा नाम के जितना लोग जानो कोई सब से। हमारा नाम कमेश कुमार मित्रा दिल्ली।
0: ठीक ही बा,
1: चले
0: ठीक। गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो 90.4 एफएम।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
11: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-349-45-651 या 97-077

0: 75।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी नमस्ते मैडम।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 91.4 एफएम में।
5: गाना सुनना है मैडम।
6: बिल्कुल, अपना नाम बता दीजिएगा जरा।
5: हम इतना बार से कॉल कर रहे हैं, मेरे से नहीं पहचानते हो क्या मैडम? बुला गए हारे से बोल रहे हैं सुमन कुमारी।
6: अच्छा,
5: क्रिंगरवा।
6: जी जी,
5: बोलिए मैडम। आइए मैडम रिकॉर्ड खाने।
6: हम बिल्कुल खाइए आप, हम भी आ ही रहे हैं रास्ते में।
5: मैडम आज अपने पसंद के गाने सुना दीजिए।
6: अपने पसंद से तो रोज सुनाती ही है।
5: अपने पसंद के आज गाना सुना दीजिए।
6: हम मतलब अपने पसंद से, आप सबको तो रोज सुनाते हैं, जब रोज शुरू करते हैं तो अपनी पसंद का एक गाना तो जरूर बजाते हैं आप लोग के लिए।
5: हाँ, उसी समय से कॉल करते करते अभी भी लगा है। ठीक है मैडम,
6: पसंद का गाना सुनिएगा। आज मेरी पसंद का गाना सुनिएगा।
5: हाँ, आज मैं आज तेरी पसंद का गाना
6: सुनिए। फिर ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम,
0: जी नमस्कार।
1: कैसी हैं मैम?
0: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आरजे लोग कैसे हैं?
0: जी जी सारे आरजे भी ठीक हैं।
1: हाँ मैम, गाना सुनवा दीजिए। रब रब कर प्यार ही हो जाए, ऐसा कोई गाना?
0: जी जी है गाना, रब करे तो जो भी प्यार हो जाए।
1: जी जी यही गाना सुनवा दीजिए। और मैं पप्पू कुमार साहब बोल रहा हूँ, पड़ा रहना बड़ा रिया सर।
0: जी जी और गाना ये आप किसी को सुनवाएंगे जी?
1: गाना सुनवाएंगे, सन्यासी बाबा जी हैं, उत्तम रोनी जी हैं, कमरान जी हैं, उमा शंकर जी हैं, और अनीश जी हैं, गुड़िया है, सविता है, और ये रानी बहन जी हैं, सबनम बहन जी हैं, और सारे जितने भी रेडियो रेडियोदय है सभी सुनाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी मैम। थैंक यू मैम।
0: वेलकम, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-556-97-644।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैम, नमस्ते।
7: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 92.4 FM में।
6: इसके लिए दिल से धन्यवाद। हम तो सुनील कुशवाहा बात कर रहे हैं मैम, IRMC से। बस बैठे हैं मैम फोन लगाते हुए। मैम आओ, वहाँ का मौसम कैसे हाल चाल है मैम?
7: अभी तो यहाँ मौसम सुन रहा है, काफी सुहाना हो रहा है मौसम हमारा।
6: जी जी जी जी मैम, हमारे यहाँ भी क्या, अभी तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था, अभी 3 दिन से नहीं हो रहा है, तो कड़ाके का धूप है मैम और गर्मी है ही है मैम। तो बस बैठे थे रेडियो रिंगिंग में फोन लगाते हुए मैम। तो आज एक फरमाइश है, फिल्म है बंजारन और गाने के बोल है मेरे दिल की गलियों में तू की आबाद है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंजन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
7: आपकी गाने को प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM।
6: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में। नमस्ते
0: और सब बताइए।
1: जी, मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं।
0: भारती मैम बोल रहे हैं कि
1: जी, मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: गाना सुनना है?
1: बिल्कुल बता दीजिए रवि जी, कौन सा गाना सुनिएगा? आपकी आवाज कट रही है। हेलो।
0: हाँ हेलो।
1: हाँ बोलिए।
0: बोल रहा हूँ, कौन सा गाना बजा दीजिए। अच्छा,
1: कोई सा।
0: हाँ,
2: दोनों आदमी है साथ में?
0: दोनों आदमी है।
1: कौन कौन?
0: हम दिनेश कुमार मिश्रा।
1: ऐसा भी? तो वो भी साइड से हैं।
2: मुझे भी बात करना है आपसे आज।
1: कीजिए कॉल, जरूर बात होगा। तो अपने मन से सुनाए, आप लोग नहीं बताइएगा आज।
0: आप नहीं मन से बात गए थी, करिए बजाइए।
1: वैसे तो रोज तो हम तो अपने मन से आप लोगों को पहला गाना सुनाते ही हैं।
0: बहुत दिन के बाद कॉल किए हैं। आज अपने मन से सुनाइए।
1: तो ये गाना आप किसी को सुनाएंगे?
0: यहीं पे है दिनेश कुमार मिश्रा जी और आप हैं मनोरमा मैम। मैं
1: चलिए फिर, ठीक है, तब आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: के लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
4: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
3: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: 2 अक्टूबर भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है। इसी दिन वर्ष 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने बिना हथियार उठाए एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया प्यार से महात्मा गांधी के नाम से जानती है। आज 2 अक्टूबर को हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत में दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थी। बचपन से ही गांधी जी के जीवन में सत्य, संयम और अहिंसा जैसे मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव का सामना किया। एक घटना में उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया।

0: उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनभागीदारी को मजबूत किया। 1930 में दांडी मार्च के दौरान उन्होंने नमक कानून का विरोध करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और देशवासियों से अंग्रेजी शासन के अंत के लिए संघर्ष करने का आग्रह किया। उनका संदेश था सत्य, अहिंसा और जनभागीदारी के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी दुनिया भर में चर्चा और अध्ययन का विषय हैं। हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाकर हम उनके जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को याद करते हैं। आइए इस गांधी जयंती पर केवल गांधी जी की तस्वीर को नमन न करें, बल्कि उनके जीवन से सत्य, अहिंसा, करुणा और मानवता का संदेश अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करें। महात्मा गांधी को शत शत नमन। जय हिंद।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो आज 2 अक्टूबर की सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश के 2 महान पुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश के लिए कई महान कार्य किए और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो उन्हीं को याद करते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और तो मेरी तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग ही बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि आज 2 अक्टूबर के अवसर पे हम लोग गाना प्ले किए थे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की शुभकामनाएं रेडियो रिमझिम परिवार को हमारे ओर से। और मैसेज करने वाला जो कि लिख रहा है, नयपारा भिरही जिला बलोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, इसे राज पप्पू ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से आप सभी श्रोताओं को भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हाय मनोरमा दीदी, गुड आफ्टरनून सब लोग को बोल दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि आप कैसे हैं जरूर बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाला है जो कि लिख रहा है, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मनोरमा मैम, मैं संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संजय जी। और लिख रहे हैं कि क्या हाल है, तो हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, मैं प्रदीप सहानी दिल्ली से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गांधी जयंती की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, हेलो गुड इवनिंग मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैसेज करने वाले हैं, और नाम मेंशन नहीं किया। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती दीदी, और मैसेज कर रहे हैं, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, जो कि लिख रहे हैं, का हाल बा दीदी ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे फरमाइश पहुंच गई है जो कि लिख रही हैं कि हेलो हाय मैम, मैं काजल कुमारी और मैं गोपालगढ़ से जुड़ गई हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और ये गाना सुनना चाहती हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM का ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर

0: शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस में। और मैं बता दूं जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं। और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 72 77 16 65 96 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं।

जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो श्रुति मैम क्या हाल है, और लिख रहे हैं कि मैं राजा लाल यादव, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्ते क्या हाल है, मैं भी जुड़ चुके हूँ। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, मैं यूपी देवरिया भटनी से, मेरा भी एक फरमाइश है प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मनोरमा जी, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से, और मेरे भी गाने की फरमाइश, मैं भी गाने की फरमाइश किया हूँ, तो प्लीज़ चूँकि लिख रहे हैं प्लीज़ फटाफट मेरा भी गाना बजा दीजिए, और गोपालगंज का क्या मौसम है बता दीजिए। मैं तो गोपालगंज का मौसम मैं बता दूँ कि धूप तो निकला हुआ है, और जो कि लिख रहे हैं कि मेरे भी गाने की फरमाइश से जो कि लिंक के माध्यम से भेजे हुए हैं, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम बा मनोरमा मैडम, हमू आ गई बानी हमरो हाजिरी लगा दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा राहुल भी, और राहुल भी हाजिरी लग चुकल बा, जो कि लिखा था नहीं मैसेज करे लवानी सन्यासी रंजन जी। और तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि निजामुद्दीन सऊदी अरब से फरमाइश किए थे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी, आपने हमारे गाना को प्ले किया इसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से, और जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम बहुत बहुत अच्छा रेडियो बज रहा है, जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम बहुत अच्छा रेडियो बजा रही हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं हाय नमस्ते भारती जी, मुझे भी गाना सुनना है, और जो कि लिख रहा है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था इसीलिए मैं नहीं आ पाया, आज बनवाया, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाला है सत्यम जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, जो कि लिख रहे हैं व्हाट्सअप और फेसबुक की इतनी बुरी लत लग गई है, व्हाट्सअप और फेसबुक की इतनी बुरी लत लग गई है, आज पड़ोसी ने एक्सरे दिखाई तो मेरे मुंह से नाइस पिक निकल गया, अब पड़ोसी करछुल लेकर ढूंढ रही है। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो श्रुति मैम, मेरा भी गाना बजा दीजिए, और लिख रहे हैं कि मेरा नाम राजलाल यादव है, जो कि वॉइस के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजे हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो श्रुति मैम, क्या हाल है? बढ़िया है, हम राजलाल यादव गोपालगंज छपिया से, एक देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिए, अच्छा सा कोई सॉन्ग सुना दीजिए, मेरी बेटी रागनी यादव, मेरे भाई चंदा देवी।
0: तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंचिंग 90.4 FM पे ये।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मनोरमा जी, प्रेम मरदेसिया, पड़ौना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश है। और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी वेरी गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं आप, मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो दीदी, सबके होके नमस्ते बोल दी हम, जो कि लिख रहे हैं हम मुझे। और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी पी प्रनारायण से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और एक बार फिर से आपको फिर से स्वागत करती हूँ, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय नमस्ते, मेरा नाम, जो कि लिख रहा है मेरा नाम नजबुल अंसारी है, और मैं बांका ज़िले का रहने वाला हूं। और लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहा है, तेरे चेहरे की मुस्कान मेरी हर सुबह बना देती है, तेरे एक नज़र में मेरी दुनिया सजा देती है, यूं ही नहीं ख़त्म खो जाते हैं तेरी यादों में, तेरी मोहब्बत हर दर्द को भुला देती है। और लिख रहे हैं कि दिल के दरिया में तेरी ही लहरें हैं, मेरी हर धड़कन पर तेरे ही पहरे हैं, चाहे कितना भी दूर रहे जमाना हमसे, हमारे प्यार के रंग हमेशा गहरे हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं निजामुद्दीन जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचे हैं जो कि लिख रहे हैं, हाय नमस्ते भारती जी, मुझे भी गाना सुनना है, और जो कि मैं लिंक के माध्यम से अपने गाने की फरमाइश भेज दी हूँ, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है, मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्यारा सा सॉन्ग, और ये सॉन्ग जय किशोर प्रसाद जी की तरफ से है, तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि जय किशोर प्रसाद जी की तरफ से था। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए, और जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हैं जो कि लिख रहे हैं कि लाजवाब गीत बा दीदी सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डॉक्टर संतोष, संगीता जसवाल जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डॉक्टर संतोष, संगीता जसवाल पुंजवंती हॉस्पिटल बस्तरा लालगंज मिर्जापुर से हूँ, एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैम बिहार से, जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैम बिहार से अनबानसान और पिपरा सिवान से बिट्टू प्रजापति, और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, जो कि लिख रहे हैं पड़ोसी से बोलचाल बनाए रखे वरना दीपावली की सफाई के लिए ऊंचे स्टूल और सीढ़ी किस मुंह से मांगोगे। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार राधे राधे जी, आज मेरा भाई का जन्मदिन है और मैसेज करना अजीत कुमार का, और साथ में मेरा भी। तो बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, बहुत सारी शुभकामनाएं, और लिख रहे हैं कि मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो नमस्ते अजीत निषाद, मैं यूपी देवरिया भटनी से, मेरा भी एक फरमाइश है और गाने के बोले घूंघटा में मुखड़ा को बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:07 हो चुके हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे अजीत जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मनोरमा मैम, कैसी हैं, हम भी जुड़ गए हैं, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं सिद्धार्थ पासवान बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है सिद्धार्थ जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैम, बिहार के आन बान शान और पिपरा सिवान से पिटू प्रजापति, और लिख रहे हैं कि गाना बजा दीजिएगा, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है जो कि जीतिया के गाना है, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं खुदा हर नज़र से बचाए आपको, खुदा हर नज़र से बचाए आपको, चांद सितारों से ज़्यादा सजाए आपको, दुख क्या होता है ये कभी पता ना चले, दुख क्या होता है ये कभी पता ना चले, खुदा ज़िंदगी में इतना हंसाए आपको। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं पाजी यूपी 54 से, जो कि लिख रहे हैं हाजिरी लगा दीजिएगा मनोरमा मैम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे बहुत ही जितना बोला जाए इनके लिए बहुत ही कम है, लेकिन इस शो से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो कि लिख रहे हैं रानी मुखर्जी को प्यार भरा नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और आप मैसेज करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि लाजवाब गीत है बोल दीजिएगा, और मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, जो कि फरमाइश की है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो दीदी, गुड आफ्टरनून, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, हमको ये गीत सुनना है बजा दीजिए, गीत का नाम है

तोहार अरे जाही के जइहा बाखिर दुए तीन दिन रहीहा होला नहीं हर स्वर्ग से सुधार हो बिना बोलवले गौरा नैहर मत जाइया। यही हमको सुनना सुना दीजिए डेडिकेट, आपको रहेगा और मनोरम भारती दीदी को रहेगा, जितना सुन रहे लोग उन लोग को रहेगा। स्पेशल में मेरे बिट्टू भैया सुनेंगे, स्पेशल में गणेश भैया, रेशमा जी को, काजल जी को सुनाना है, जितना सुन रहे हैं सबको बजा दीजिए प्लीज।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि करिश्मा जी की तरफ से था, जो कि करिश्मा जी की तरफ से था। और यहाँ पे फीडबैक मैसेज पहुँच गया, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनके फीडबैक मैसेज।
1: थैंक यू दीदी गीत प्ले करने के लिए, हम अपना गीत सुन रहे हैं, लेकिन आप गीत में थोड़ा गुनगुना दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है हमको। सब गीत में थोड़ा गुनगुना दीजिए, अच्छा लगता है हमको। थैंक यू।

प्यारे आवाज में वॉइस पहुंची हुई थी और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मुझे भी गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं बिट्टू प्रजापति, और जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम मेरा गाना चला दीजिए, और गाने के बोल हैं माई हमार जीतिया भुखलवाड़ी। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं बिट्टू जी, और इन्जॉय करते हैं रेडियो।

0: माये तो हमार दुनिया है।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा बिट्टू जी को। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया, मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पित्र नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अच्छा गाना बा मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी हमार गाना कब प्ले कर दें। और लिखता नहीं कि और मनोरमा जी सब माई लोग इनके हमारा तरफ से ज्योति व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं बा। तो जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मनोरमा दीदी कैसी हैं, मेरा नाम जनित है बरौली गोपालगंज से, मुझे भी गाना सुनना है, जो कि लिंक के माध्यम से भेज दिए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम से बहुत लाजवाब गाना चल रहा है रेडियो रिमझिम पे। और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुशवाहा मध्य प्रदेश से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिए। और लिख रहे हैं कि मेरा गाना आप कब तक प्ले कीजिएगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। इससे पहले प्लीज आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो, और मैसेज की फरमाइश की लिंक के माध्यम से। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही बेहतर सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, जो कि मैसेज पहुँच गया सत्यम जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा गाना था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे जो कि लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना था करिश्मा जी का भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी नमस्कार, राधे राधे जी मेरा सॉन्ग बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि दिल से धन्यवाद गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और लिंक के माध्यम से भेजे हुए हैं, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे जी आज मेरा भी और गाने के बोल हैं तू मेरी मैया है मैं तेरा लाला। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम। यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार जी और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि चूँकि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि तेरी आँखों के नूर में मेरी हर शाम सरस संवरती है। तेरी आँखों के नूर में लिख रहे हैं कि तेरी आँखों के नूर से मेरी हर शाम संवरती है। तू जो मुस्कुरा दे तो पूरी कयामत निकलती है। फसलों की क्या औकात जो जुदा कर दे हमें। तेरी खुशबू मेरी हर सांस में महकती है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं नजफुद्दीन अंसारी जी और जो कि बांका जिले के रहने वाले हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहा है कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए जो कि लिंक के माध्यम से है। और मैसेज करने वाले हैं नजफुद्दीन अंसारी और तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंजिंग 90.4 FM पे प्यारा सॉन्ग।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:44 हो गए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, तेरे ख्यालों से ही दिल में एक रोशनी सी रहती है, तेरे ख्यालों से ही दिल में एक रोशनी सी रहती है, दूर होकर भी तू मेरे धड़कनों के पास बहती है। वक्त और लकीरों की परवाह किसे है इस जहां में, वक्त और लकीरों की परवाह किसे है इस जहां में, मेरी रूह तो बस तेरी मोहब्बत की जुबा कहती है। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैसेज करने वाले हैं नजबुल अंसारी जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि हेलो गुड इवनिंग रेडियो फरमाइश, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं सालू भरद्वाज, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, हम चार दिनों से बाहर थे, इस कारण आपके रेडियो रिमझिम नहीं सुन रहे थे, हमको माफ़ कर दीजिएगा। और लिख रहे हैं परा भिरई से प्रमोद कुमार साहू, कभी कभी टावर मिलता है आपके रेडियो सुनते हैं, आज हमारा दिन है गाना सुनने का, कोई भी एक पूजनीय महात्मा गांधी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे एक देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं प्रमोद जी, और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग सॉन्ग सुन रहे थे जो कि यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं धन्यवाद भारती जी, जय जवान जय किसान प्रमोद कुमार साहू। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आज का सॉन्ग बहुत अच्छा चला था। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी जो कि पिपरा नारायण के रहने वाले हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मेरे तरफ से सभी श्रोताओं को जुम्मा मुबारक हो। और मैसेज करने वाले हैं सगीर आलम अंसारी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं भूख तो लग गई हुई दीदी। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो ना भूख तो नहीं लागल, अभी भूख लगी भी तो रोगा सबके गाना बजा के ही हम जाए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है हेलो गुड आफ्टरनून। और लिख रहे हैं कि मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। और गाने के बोल है जब तेरी याद आती है मुझे तड़पाती है। और ये गाना सुनवाना चाहते हैं भारद्वाज को, सुनाना चाहते हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। इससे पहले प्लीज़ आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो नाम बताने में। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग जो कि गाने के बोल है याद तेरी आती है।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार पहुँचा है जो लिख रहे हैं, यस मैम मेरी मैम बहुत रेडियो सुनती हैं और मैसेज करने वाली हैं, मैसेज करने वाले हैं साहुल, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है कि मनोरमा दीदी अगर मछली खाए की हुई तो आई, और लिख रहा है कि हमारा तरफ से सब रेडियो रिंजिम। तो जरूर आए हम खाए, ऐसा बात नहीं थी, पहले रवालों के गाना तो पूरा कर दी ओकर बाद आओ तनी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि नमस्ते मनोरमा दीदी कैसी हैं, मेरा नाम जैनित है, मैं बरौली गोपालगंज से हूँ, मुझे भी गाना सुनना है, जो कि लिंक के माध्यम से भेज दिया। तो चलिए जैनित जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिंजिम 90.4 FM पे। सॉन्ग जो कि लिंक

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि गाने के बोल थे हमार दुनिया है या हमार माई। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक्स दी गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, लिख रहे कि माँ सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मनोरमा जी, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है।

जो कह कि मैम गाना प्ले कर दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, मुस्कुराने की वजह तुम हो, और मैसेज करने वाली हैं और मैसेज करने वाले हैं साहुल जी। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, जो कि अजीत सिंह की आवाज़ में है, और प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंगजुम 90.4 FM।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मनोरमा जी नमस्कार, आज मैं घूमने चला गया था इसीलिए लेट हो गया, कैसे हैं आप? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा जी, तो कोई बात नहीं है, घूमना भी चाहिए, इंजॉय करिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं खाना नहीं आया होगा तो जोमेटो से ऑर्डर हो जाएगा। मुखर्जी अब तो लंच की समय हो गया है आप लोग की, तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसा बात नहीं है, लंच है, लंच कर लेंगे लोग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं संदीप कुमार जी जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और गाने के बोल हैं हमरो उम्र तुम्हारे के लाग जाओ और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: Sudhir Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ा और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
3: मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोच रहा था कि एक बार नीचे जा रहा और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान नहीं मेरे को बचाए।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
4: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है हम इमीडिएट एक दो घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान भगवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
4: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
13: भरोसे वाले चलेंगे,
12: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
13: और कीमत भी।
12: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
14: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
15: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
14: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
16: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
14: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
17: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
14: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
19: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
20: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
19: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
20: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
19: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन।

0: दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

छोटी सी ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम जी, और मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश आजमगढ़ यूपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और

अभी कुछ देर पहले मनोरमा जी ने आपके गाने को प्ले किया था, तो मैं आपके गाने को दोबारा प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा दीदी आज मुझे भी छत्तीसगढ़ी गाना सॉन्ग सुनना है। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है और मैसेज करने वाले हैं न्यापारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसर राज, पप्पू ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूं कि कल आपके गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे, क्योंकि कल आपके गाने की फरमाइश की बारी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मैं नंदन उपाध्याय, मेरे को गाना सुनने का है और गाने की बोल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं अली हुसैन अंसारी बिहार से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और जो कि लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनना है, प्रेम मधेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4।

0: ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
8: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-023-35-8-76 या 95-999-27-982।
10: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है प्रेम मधेसिया पटरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अभी जिनका गाना चल रहा था उनकी तरफ से फीडबैक का मैसेज पहुँच गया है, तो चलिए जानते हैं क्या इनका फीडबैक मैसेज।
11: भारती जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत आते आते ही गाना बजा दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
10: और काफी खूबसूरत वॉइस पहुंचा हुआ है। तो जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, अली हुसैन अंसारी बिहार से, किर्गिस्तान से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी। और मैं रोहित देहरादून से लिख रहे हैं कि एक महिला ने सनी देव से पूछा स्त्री को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं देते? सनी देव बोले, मैंने तुम्हें एक देव दिया है पति देव, उसे परेशान करो मुझे नहीं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी, एक बार फिर से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि फिर से हाजिरी हो जाए और सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज मेरी भी गाना प्ले कर दीजिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना कब चलेगा? और मैम जी, और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश आजमगढ़ यूपी से जुड़े हुए हैं। तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और काफी देर से वेट कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं, जो कि लिख रहे हैं डॉक्टर संतोष, संगीता जैसल और पूजा वंती हॉस्पिटल बस्त्रा लालगंज मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं और एक गाना गजल सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं कोई एक अच्छा सा गजल प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए एक अच्छा सा गजल प्ले करते हैं और सुनते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू मां जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ा।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी प्यारा सा गज़ल, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं आप? आपके बीच जुड़ गया हूँ, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी कैसी हैं, और पटना से जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ ये गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है। नंदन उपाध्याय जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं शिल्पी राज का, और गाने की बोल है काला साड़ी, और काफ़ी बढ़िया गाना है। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955497644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:14 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, क्या हाल है, आप ठीक तो हो? और मैम मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और मेरा गाना है कि, और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और लिख रहे हैं मेरा नाम अलीसा निषाद है और लिख रही हैं कि मैम मेरा गाना जल्दी से बजा दीजिएगा ना प्लीज़। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इंद्रजीत कुमार, मैं भोजपुरी भी कुछ अच्छे गाने होते हैं बट लोग सुनते नहीं हैं। और जी आपकी बात सही है, भोजपुरी में भी कुछ अच्छे गाने होते हैं। और लिख रहे हैं हाय भारती जी, कैसी हैं आप? तो जी मैं ठीक हूँ। और लिख रहे हैं कि तेरे इश्क के बदले मेरी जान ले लिया उसने, मेरा खुशियों का सारा जहां ले लिया उसने, मैं भीगती पलकों से जमी को ताकता रह गया, मेरे हिस्से का सारा आसमान ले लिया उसने। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि पटना में अभी रेनिंग हो रहा है और गोपालगंज का मौसम क्या है? तो जी अभी गोपालगंज का तो मौसम काफ़ी बढ़िया है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से पहुँचा हुआ है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी तरफ से जोक पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि रेलवे TC बाबा कहाँ जाओगे, साधु बाबा जहाँ राम का जन्म हुआ था, TC टिकट दिखाओ, साधु बाबा नहीं है बच्चा, TC तो चलो, साधु कहाँ, TC जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं रोहित जी की, कहते हैं जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मैं कहता हूँ मांग ही कौन रहा है दोबारा, यही वाली सही से निपट जाए वही बहुत है। और ये बात, ये आपकी लाइन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नजावुल, और लिख रहे हैं कि न जाने कैसा रिश्ता है तुमसे, दूर भी है और तुमसे जुड़ाव भी, तुम सामने हो तो हर खुशी बढ़ जाती है, तेरी आंखों की चमक मेरे दिल जीत ले जाती है। और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है मोहरा मूवी का। तो जी मैं आपको बता दूं कि आज ही आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया गया है और मनोरमा जी ने आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया है, तो आज मैं तो नहीं बजा सकती, फिर अगले शुक्रवार को आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, दुर्गेश आजमगढ़ यूपी से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और हिंदी सॉन्ग है और गाने की बोल है आज अभी इसी वक्त और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना आज अभी इसी वक्त। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना चलाने के लिए धन्यवाद मैडम जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दिल से मिले दिल तो सजा देते हैं लोग, प्यार के जज्बात को दबा देते हैं लोग, जो इंसानों को मिलना कैसे देख सकते हैं, दो इंसानों को मिलना कैसे देख सकते हैं, जब साथ बैठे दो परिंदे को भी उड़ा देते हैं लोग। और काफ़ी बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तेरी नज़र में प्यार ही गहराई है, तेरे हुस्न में रब की मेहरबानी है, तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी का एहसास हो। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। नजाबुल अंसारी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलामुअलैकुम मैम, मैं हजरा सूरत से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा और मेरा भी पुर्जा लगा दीजिएगा। और मैम मैं हजरा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं कि ससुराल वालों को चाहे कितनी भी अच्छी बहू मिल जाए, तारीफ हमेशा फलाने की बहू की ही करते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख तो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, और जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर यहाँ हमारे पास एक इंद्रजीत कुमार, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं अली हुसैन अंसारी, बिहार किर्गिस्तान से जुड़े हुए हैं, और इनकी तरफ से गाने की जो फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है, कुछ दिन रही ए बलम जी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रोहित जी की तुम्हारी यादों से अच्छी तो बिल्लियाँ होती हैं जो आने से पहले पूछती हैं मैं आऊँ। और ये तो बात बिल्कुल सही है, बिल्लियाँ जरूर पूछती हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, कैसी हैं, हम अहमद अली, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम आफरीन सेबी है और घर धामा पाकड़ है, और मेरे को गाना सुनना है, जल्दी बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी, आपके गाने को आज प्ले नहीं कर सकती, मैं आपके गाने को गुरुवार को प्ले करूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी, मुझे भी गाना सुनना है और मैं जितेंद्र धाकड़ गुना ककवासा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जा कर भी हम उनको

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं इंद्रजीत कुमार जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार प्रणाम भारती मैम, और मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं हिजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ, और मैम मेरा एक फरमाइश है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा फरमाइश प्ले कर दीजिएगा और मनोरमा जी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा।

नमस्कार। तो जी बिल्कुल बोल देंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पाजी यूपी 54 से कि मैडम जी हो एक भोजपुरी में शायरी बा, और लिख रहे हैं कि रात खत्म होला तो भोर होला, सूरज निकलेला तो चारों तरफ शोर होला, इतिहास गवाह बा हमार मैडम जी, जवन लड़की नसीब में ना होले ओकरे से मोहब्बत बहुत बिजोड़ होला। पर लिख रहे हैं हकीकत बा और गाना तो हमार बाजी ना हम जानत बानी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और जी आपके भी गाने की फरमाइश अगर भेज दी तो मैं पूरी कर दूंगी, आज बिल्कुल पूरा करेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि क्या भारती जी, क्या हाल चाल है आपका, कई दिनों के बाद आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी बिल्कुल काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास धनेश जी की तरफ से, और चुटकुला पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि लड़की पंजाब एक्सप्रेस कब आएगी, टीटी 5 बजे लड़की, लोकल टीटी 9 बजे लड़की, मालगाड़ी टीटी 1 बजे पर आपको जाना कहाँ है, लड़की कहीं नहीं बस पटरी पर लेटकर सेल्फी लेनी थी, टीटी बेहोश। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि परदेसवा कल चल जाए बहुत सुंदर, और गीत पसंद करने वाले को भी धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं टुनटुन यादव विलेज पठानपट्टी पोस्ट पठरा जिला गोपालगंज से बानी, और अभी हम सूरत गुजरात से रेडियो रिमझिम सुना तानी, हमके गाना सुने के बाद आपके और गाने की बोल पहुँची हुई है, और गाने की बोल है आपके करीब हम रहते हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए आपकी तरफ से भेजे हुए गाने को प्ले करते हैं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए,
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231, जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं टुनटुन यादव, और लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद भारती मैम। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रोहित जी की लड़की वाले देखने आ रहे थे, रोड बहुत ख़राब था तो वापस चले गए, बोले रास्ता इतना ख़राब है तो लड़का कितना ख़राब होगा। और क्या ही कहा जाए, रास्ता ख़राब है तो इसमें लड़की की क्या गलती है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं ना हो मैडम जी हमके विश्वास बा आज आप पे कि हमार गाना बजाए बाप, तो गाने की फरमाइश कीजिए तो बिल्कुल बजा देते, पर अभी तो टाइम पूरा होने वाला है। और इसी के साथ क्या है जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और वॉइस के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: ई कौन बीमारी धरा दिल बाड़ू, यह गाना सुनने के बाद नाम शंभू यादव हिमाचल प्रदेश सोलन से, और साथ में बालो अजय कुमार चंदन कुमार हरि कुमार यादव जवाहर यादव मंटू यादव ये सब के उनके गाना सुनने के बाद ये लोग के संगे संगे रिम झिम के जितना श्रोता बालू सब के उनके गाना सुनने के बाद ठीक बा, बाकी सारी श्रोतागण के दिल से प्रणाम बा, भारती मैडम जी को भी प्रणाम बा दिल से, बस गाना बजा दे, मेरी रिक्वेस्ट बा।

0: भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही है हजरा जी की, बोल दीजिए मैम कि दहेज के बदले में रोड बनवा दे और फिर शादी करें। और मैसेज पहुंचा हुआ है हजरा जी की तरफ से रोहित जी के लिए, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, ओके भारती जी बाय बाय, मिलते हैं कल। और मैसेज करने वाले हैं प्रेम मधेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो जी आपको भी बाय बाय। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है रोहित जी की, मैं तुम्हारी तस्वीर को उतनी ही ध्यान से देखता हूँ जितना ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। और लिख रहा है बाय बाय भारती जी नमस्कार, तो आपको भी मेरी तरफ से बाय बाय। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और जितिन जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और समय भी हो गया है हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का, और इसी के साथ यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच चुके हैं। तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ, यदि आप हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो आज के लिए बस इतना ही। और लिख रहा है कि भारती जी उनको बोल दीजिए कि मेरी शादी हो गई है और मेरे दो बच्चे हैं। और जी बिल्कुल, और यहाँ हजरा जी आप सुन लीजिए, उनकी शादी हो गई है और उनकी दो बच्चे भी हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहती हैं अलीसा नहीद, और गाने की बोल है जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो इसी गाने के साथ आज लूँगी आप सभी से विदा, और सुनते रहें आप रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो कहता है सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
12: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।

सुने के एह निर्गुण में इधर सावल बा कि पांच गो कसैया मिलके चीर तारे गैया भैया जल्दी आवो ई गाना के बोलबा। अब इकरुआ कहब कि पांच गो कसैया मिलके उ प्रसंग ना हो। पांच गो कसाई के मतलब काम क्रोध मोह लोभ आ ईर्ष्या। ई पांच गो कसाई मिलके देह के कैसे बर्बाद करता, एह तन के बर्बाद करता, इससे बचे के बा कवि का कहता देखी।

भइले मुदैया कतना क्रूर भइले।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

बिहान होई बेकरी खैला से बेसी होई त जियान होई बेकरी और खिलल बगिया जब उजड़ी ये भाई जी ओह जगहिया पर बिरान होई बे करी गीतबा।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर के बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-714-86-165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: संजय फ्रैक क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765065750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94-9-11। जी हाँ, 8029-94-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: जी नमस्ते मैम।
14: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
15: कौन जी बोल रहे हैं?
14: कहाँ से?
15: हथुआ से।
14: अच्छा, तो कैसे हैं आप?
15: ठीक है। मनोरमा जी की भारती जी?
14: मनोरमा।
15: अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कैसे हैं?
14: जी मैं भी ठीक हूँ। तो क्या आप हेलो माई चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं पवन जी?
15: ना, 2 बार किए थे।
14: अच्छा,
15: सुनने में भी मजा आता है। दुकान भी है, दुकान आदमी रख देता है, ब्लूटूथ लगा के आराम सुनता है।
14: तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
15: बहुत अच्छा लगता है। सभी तो 11 बजे का इंतजार करते करते अभी इतना समय हो, फोन लगा है।
14: तो वैसे क्या करते हैं आप?
15: अपना दुकान है मेडिकल का, डॉक्टर जावेद आलम का कंपाउंडर है।
14: ये बहुत अच्छी की बात है
15: जी।
14: तो कौन जी, कौन सा गाना सुनिएगा?
15: रब जो चाहे तुझको प्यार हो जाए, वही सुना दीजिए।
14: हम तो आपको गाना जरूर सुनवाएंगे, तो क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे? तो
15: ना, पूरा याद नहीं है इसीलिए।
14: कोई बात नहीं, बस आप तो 2 लाइन ही गाना है।
15: रहने दीजिए, अगला बार गा के सुना देंगे।
14: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है
15: जी।
14: तो गाने की बोली एक बार और बता दीजिए।
15: रब जो चाहे तुझको प्यार हो जाए, हिंदी गाना है
14: जी। गाना भी चाहते हैं
15: अपने दोस्त लोग, आपको भी पूरा रेडियो रिमझिम सब श्रोता लोग को जी।
14: ओके तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं
15: जी। जी
14: सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: जी जी नमस्ते
14: नमस्ते।

0: बहुत बहुत अच्छा आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम पर।
1: हाँ, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हम जाकिर हुसैन गोपालपुर जादवपुर से बिहार से।
0: जी जाकिर जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैडम, हम ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम भी बढ़िया हैं।
1: अब मैडम क्या चल रहा है आजकल?
0: क्या होगा, बस कुछ नहीं, आप लोग से बातें हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है।
1: बहुत अच्छा, चलिए मैडम गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बता दीजिए।
1: अरे मैडम एक गाना आता है सजनवा पहरी बहली हमारे, उसमें गाना है आज के दिन तारी बाबू जी रही थे घर हुआ हो, इसमें हमको गाना सुनना है।
0: तो जाकिर जी ये गाना आप मुझे दो लाइन गा के बताएंगे?
1: जी तो मैम गाना याद नहीं, मगर दूसरा गा सकते, उतना याद नहीं मैम, थोड़ा गा सकते हैं।
0: ये कोई बात नहीं,
1: सुना सकते हैं?
0: जी बिल्कुल सुना दीजिए।
1: जी

0: नाम याद नहीं है, इसी चलते बोला।
1: जी जी कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छा गाया।
0: अपना दोस्त का नाम लेना चाहते हैं ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। सुफियालम है, मिराज है, यीशु पन्नी है, जितलेश शर्मा, गोविंदा और मनोज और ये सबको रेडियो यूनियन को पूरा परिवार को आपको भी।
1: ओके जाकिर जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
0: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। हेलो।
9: हाँ हेलो, नमस्ते
8: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: कैसी हैं
8: जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
9: मैं भी ठीक हूँ। अब खाना होना हो गया?
8: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आपका हुआ?
9: हाँ, अभी जस्ट हुआ।
8: चलिए बढ़िया है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
9: मैं लईभाता से बोल रही हूँ।
8: अच्छा, और आपका नाम?
9: मेरा नाम उषा है।
8: तो उषा जी, आप हेलो माई चॉइस में पहली बार कॉल की हैं?
9: नहीं, कितनी बार कर चुकी हूँ।
8: अच्छा जी,
9: अभी अगली बार वाला मेरा रिकॉर्डिंग चला भी नहीं है।
8: जी जी, हो गया है ना, अभी बहुत सारे कॉल हैं तो आज बजेंगे।
9: और आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो?
8: जो आज रिकॉर्डिंग हो रहा है वो कल चलेगा। जी, तो उषा जी आज कौन सा गाना सुनिएगा आप?
9: आज मुझे गाना सुना दीजिए, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, ओल्ड सॉन्ग ही है
8: जी। तो उषा जी, ये गाना आप मुझे गा के बताएंगी?
9: I'm सॉरी, मैं गाती नहीं, ओनली सुनती हूँ।
8: इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
9: हाँ, सुनवाना चाहूंगी ना, जिसके लिए है वो खुद सुन लेगा।
8: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
9: थैंक यू
8: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: ओके, बाय
8: बाय।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, करीमा जिला देवघर झारखंड से।
0: जी सुधीर जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: बहुत ट्राई करने के बाद लगे, सोमवार को तो 300 से ज्यादा बार लगाए थे लेकिन नहीं कॉल लगी, आज भी 200 से ऊपर कॉल किए तब जाके अब लगी।
0: अच्छा जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
1: जी जी जी, इतने भी लिसनर भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना, इसीलिए तो।
0: जी जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो कॉल लगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: आज पुरानी फिल्म का गाना है मैम, लता मंगेशकर की आवाज में आया था, झूम के गाना, जिसके बोल हैं रामा दुहाई रामा दुहाई।
0: जी जी, और ये गाना डेडिकेट भी है।
1: जी सबसे पहले मैं आपको और जितने रेडियो के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके सुधीर जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
1: करने के लिए धन्यवाद मैम।
0: वेलकम।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम।
5: नमस्ते दी, प्रणाम और राधे राधे। और कैसन बानी, बताई रहुआ?
6: जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। हम ठीक बानी, रहुआ बताई की रहुआ?
5: बिल्कुल चका चौक रहोगे की जैसा
6: सही रहे के चाहिए।
5: और आज स्टार्टिंग से रहोगे बानी क्या?
6: जी
5: चलिए, बिल्कुल। बहुत लोग खाइश रहला, बात ना होते रहला, पूरा कर देनी का। और नाश्ता वास्ता कर ले बानी?
6: हाँ जी, हो गई बाइला।
5: हाँ हाँ बिल्कुल हो गई बा।
6: टाइम आज बहुत ही कम बा, बता दी जाना।
5: जी जी, टाइम तो बहुत कम बा, कहीं जाए
6: जी जी, एक बात से भारती जी रिकॉर्ड कर।
5: चलिए ठीक है, भारती जी क्या बात?
6: भारती जी भी यही बानी। हेलो जी जी, गाना बता दिया?
5: गाना बताने का हम अपना पसंद से सुने नहीं थे, रहुआ बजा दिया बस।
6: अच्छा चलिए, हम अपन पसंद से कई और दिन मतलब बजा दें, आज बता दी ना रहुआ। बहुत मुश्किल से कॉल के लिए बानी।
5: हेलो
6: जी, आवाज कट कट के आता रहो।
5: नेटवर्क प्रॉब्लम बा ना, और कह दे हमेशा तो हम अपन पसंद के सुने नहीं ना, इतना दिन बाद बैल बता रहुआ, अपना पसंद से बजाई।
6: हमारा पसंद के तो रोज बाजे लगे, इतना मुश्किल से कॉल कैले बानी
5: ना ना ना ना। जैसे हम फोन कैले बानी तो हम अपने पसंद के सॉन्ग सुनने वाली रहो, अपने पसंद से बजाई आज। आज पसंद के सुने के बाद
6: चलिए, जब रघुआ कहते हैं तो बजा दे। मोई के भोजपुरी में सुने
5: राउर पसंद आ रहा, वो हमी की जज करे की चाहे ना, कहा राउर पसंद कैसन बा रहुआ बजाई।
6: अच्छा जी,
5: अच्छा जी, और पता बा रहुआ, हमेशा सब रोज अली जी कॉल करते रहिए रहुआ से बात करे खातिर, और बात होते रहला भारती जी है, भारती जी से। और काफी अच्छा भोजपुरी काफी निक बा, वहाँ क्या बहुत अच्छा कढ़ाई करता, बोल लेता नहीं अच्छा खासा, अच्छा लगता सुन के। और पता ना आज आज की रिकॉर्डिंग में रहुआ से बात भइल बा के नइखे भइल ना, तो हमेशा भारती दीदी से पूछत रहनी है।
6: जी जी बात तो भइल ना, रुआ के भी पूछत रहनी है कि रानी जी कॉल कर ले रहनी है कि
5: ना। और बहुत अच्छा बोला तनी भोजपुरी, और बोलते बोलते था और हमने के गांव में रह कर अगर भोजपुरी ना बोली तो भोजपुरी के फायदा क्या था है का। और ये बताई रहुआ, रुआ कहत रही हमारा घर खेती ना होला, तो रुआ सच में खेती बाड़ी नहीं की देख ले देखिए, अगर ना लगत अब की आवाज से अपना मुंह से अगर कोनो बात कह दे तो अगर नहीं देख ले तो आई हम देखा दी रहुआ के।
6: बिल्कुल
5: सच में नहीं देख ले दी
6: जी,
5: सच में नहीं देख ले,
6: थोड़ा बहुत देख ले मौसम में कौन से
5: अच्छा। हम बताओ तनी ये घड़ी के दिन में धान होला, एक बाद गेहूँ बुआई, मकई बुआई, आलू बुआई, सरसों बुआई, सोड़ा बुआई, और एक बाद पूरा फसल जबरदस्त हो या और आयम दम धान काटे के सिखा दे। हाँ ये घड़ी धान बोवाला, और वैसे इतना सवाल के ले रही हूँ अपने साइड के बताई की हमने के सोबीन वोबीन बोवाला तो काफी अच्छा लगे, हमने के तो सारी जानकारी बा गाँव में बानी तो सबके पता बा ना।
6: तो रानी जी को हम बात
5: जी का ही
6: बहुत ही मन
5: बिल्कुल आयम आयम, अगर ये ध्यान अगर रखे तो वो लोग स्टूडियो में आए तो डायरेक्टर सर से परमिशन लेने के पड़ेगा, तो अगर वही बात गलत एकदम जरूर आएंगे एक बार। जी जी और मिले और ये गाना सब कोई की सवारे रानी की तरफ से ठीक बा, और काफी भोजपुरी निक निक लागत है सब कोई के रहुआ दोनों आदमी के हमारा तरफ से। और आज तो हम ये 12 बजे वाला शो में ना जुड़े, मम्मी फोन लेके गई बनी गोपालगंज, तो देखिए आगे क्या होता। जी
6: चलिए तो फिर गाना
5: बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही आप एकदम यही अंदाज में बात करते रहिए एकदम सबके दिल जीत लेवे के बाद।
6: जी जी रहुआ
5: बिल्कुल हमार सपोर्ट तो पूरा का ढाका भर के बाद।
6: चलिए तो फिर प्ले करता है सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते,
0: कैसी हैं मैम
1: जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक है।
1: चलिए बढ़िया। तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: आज सुनवा दीजिए नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
1: ओके, वैसे आपका नाम?
0: मनीषा कुमारी कन्या सुंदर से।
1: जी मनीषा जी, और ये गाना आप जो बताएंगे वो किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: जी मैम, आपको और भारती मैम को और दिव्या मैम को, श्रुति मैम को और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को।
1: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
0: बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: Now pick your phone up.
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: नमस्ते मैम।
7: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: थैंक यू मैम।
7: जी नाम बता दीजिए।
8: मेरा नाम गुलेन अंसारी है
7: जी। और कहाँ से?
8: मैं बैकुंठपुर से बोल रहा हूँ, मेरा जिला गोपालगंज पड़ता है। जी बताइए मैम, कैसी हैं आप?
7: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
8: हम भी अच्छे हैं। आज तो फोन लगाते लगाते थक गया था, आज हम भी सोच लेते हैं सुनी भी मानेंगे गाना।
7: अच्छा जी।
8: हाँ तो क्या, कल ही वॉइस योर चॉइस में फोन लगा रहे थे हम, लेकिन लग रहा था लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहे थे फोन। बाद में फोन रिसीव हुआ था हमारा, तो गाना सुन लिए थे।
7: आप तो सोचा ना आप अपने गाने की फरमाइश को सुन लिए, तो
8: मेरा गाना सुनवा दीजिएगा, चेहरा तेरा, किताबी किताबी।
7: जी गाना तो बहुत ही अच्छा
8: है। जी बहुत अच्छा है।
7: ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
8: मैम हम गाना नहीं गाते, सिर्फ सुनते हैं।
7: गाना तो बहुत ही अच्छा, आप दो लाइन ही गाते तो बहुत अच्छा होता।
8: चेहरा तेरा, किताबी किताबी, हट आँखों में जवाबी जवाबी, चेहरा तेरा, किताबी किताबी, हट आँखों में जवाबी जवाबी। बस इतना ही आता है मैम।
7: जी आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं।
8: थैंक यू।
7: जी इतना अच्छा गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता है।
8: ज्यादा नहीं गाता हूँ।
7: चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा आपका गाना मुझे सुन के।
8: जी आप सुनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको रेडियो रंजन सभी लिसनर के साथ?
7: ओके धनंजय जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
8: जी थैंक यू मैम, थैंक यू।
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
8: जी थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
0: हाँ प्रणाम
1: जी। प्रणाम।
0: क्या हाल बा
1: जी? ठीक बा। आप बताइए, रघु कृष्ण मानी
0: आज आरती जी से पता है तो सोगे मिल।
1: हाँ, आज आरती जी की रिकॉर्डिंग बारी बारी की बात से बात।
0: अरे बाप रे बाप, ये लोग कहा जला है की एकरा से बात करे के ओकरा से बात ना होला। सही बताओ तो नहीं, आज आरती जी से हम
1: बात जी से बात कर ले। पहले रघुआ गाना बता दी, कौन सी कौन सा गाना सुने?
0: पहले आप सुनाए आज
1: हमारे हाल चाल तो ठीक है।
0: अरे हमने से ऊपर अलग दुआ से
1: नाश्ता तो भैल की ना
0: नाश्ता हमने तो कल क्या
1: है
0: हाल क्या है पूछो चलो हाल क्या है गजब गया
1: के वालों बता रहे हैं तो बहुत अच्छा
0: लगेगा। तो चेंजिंग गावे
1: लागे बात
0: तो
1: ना अच्छा लगेगा गाय के दूर सुना
0: गावे तो चौबे करो आगे से अगर अगर आगे लोग कही जाए तो आदमी बैठे कर कहते ना कब ना गाओ
1: गाना
0: गाया आगे लोग तो भी गाने चाहिए अभी खास
1: आगे लोग तो भी ज्यादा चलो अच्छा गाने गा रहे तो गाए
0: ना आगे लोग तो भी गाए थे यार। एक और नहीं कहो पहले चॉइस तो नहीं कहो प्योर वॉइस और चॉइस और ही गाए थे पूरा पूरा दिन में एक्शन करना हुई कि कौन एकदम फेवरेट कराना पा जाते तो अगर कराना बंद कर ला तो एक बार लाइक कर
1: चले वो तो आप ऐसा कोशिश
0: हुई कोशिश ना हो कोशिश करे क्या है।
1: अच्छा
0: हाँ ये से बढ़िया रहेगा
1: ठीक है। तो फिर गाने के रूप में
0: मनोरमा जी के भारती जी के और अनिल जी जोधपुर वाले और लोग भैया के और जितना सामने वाले।
1: अच्छा तो चलिए फिर अब गाना हम प्ले करता नहीं
0: वो कुछ है।
1: हाँ बता दी
0: सुना मिश्रा सिंह
1: जी जी। तो चलिए फिर प्ले करते हैं अब गाना सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: मुस्कुराना। अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग 90.4 FM में।
13: नमस्ते मैडम
12: जी। नमस्ते
13: भारती मैडम।
12: नहीं,
13: मुनार्मा जी।
12: हाँ जी,
13: हाँ जी, बोलिए।
12: नाम बता दीजिए अपना।
13: विकास कुमार हिंटापुर
12: जी। विकास जी, क्या हाल चाल है?
13: हेलो।
12: हाँ जी,
13: हाँ बोलिए, क्या हाल चाल है मैडम
12: जी? मेरा तो ठीक है, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
13: बढ़िया है जी, आपसे बहुत काफी दिन से बात हो रहा है, काफी दिन के बाद।
12: अच्छा जी,
13: कैसे हैं आप?
12: जी मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ।
13: अच्छा, और गोपालगंज में तो बाढ़ आ गया है जी?
12: गोपालगंज में बाढ़ आया लेकिन हमारे तरफ नहीं आया।
13: हाँ, इधर में हम लोग का तरफ ऊंच एरिया है ना
12: जी। तो और विकास जी बताइए क्या हो रहा है?
13: बस काम धाम हो रहा है, आप लोग से बात करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं दिल्ली नोएडा।
12: अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।
13: और भारती मैडम कैसे हैं?
12: जी भारती मैडम भी अच्छी हैं।
13: अच्छा, और सोनी मैडम चली गई क्या? उनसे बात नहीं होता है, वो कॉल नहीं बात। और बताइए मैडम कैसे हैं आप?
12: जी जी सब कोई बढ़िया है। तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
13: हमको वो नील कमल का गाना सुनना है, छठ पूजा का।
12: अच्छा,
13: अब छठ गीत सुनाए वो नील कमल का नहीं है, छठ छठ का गाना।
12: जी जी,
13: वो बहुत मस्त लगता है।
12: हाँ, गाना तो अच्छा ही लगता है।
13: हाँ, उसके पास में वो मालूम ना कौन से गायकरी है, वो भी खूब बढ़िया गाती है वो।
12: जी जी,
13: हाँ।
12: और ये गाना जो बताए वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
13: आप लोग का दोनों अम्बी को सुनवाना है, भारती मैम को और मुनार्मा जी को, और जितना रेडियो रिंगन सुनने वाले हैं सबको डेडिकेट करना चाहते हैं।
12: ओके विकास जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
13: मेरे घर में मेरे मम्मी और मेरी मैडम को, एक मेरा दोस्त है गुरदेव।
12: अच्छा अच्छा,
13: हाँ।
12: तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
13: ठीक है, ओके मैडम
12: जी। सुनते रहिए सबको प्रणाम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी
1: जी। नमस्ते,
0: क्या हाल हुआ
1: जी? हाल तो ठीक बा रहुआ, बताएं कि रहुआ कैसन बानी?
0: हाँ ठीक बानी। भारती दीदी क्या बानी?
1: भारती दीदी भी बानी, काम करता नहीं अपन।
0: खाना वाना हो गया बा?
1: हाँ जी हो गया बार। और भैल
0: हाँ हमी के हो गया बा, अब दोबारा हो।
1: अच्छा चली बोली।
0: और सब बोली?
1: और सब ठीक बा। वैसे कहाँ गए रही रहुआ?
0: एनिये रहनी है द्वार की ओर।
1: अच्छा लेट हो गया रहुआ कॉल करे में?
0: लेट वही ब्रश लगावत रहनी है
2: तरी हमारा पर।
1: अच्छा
2: सुनी ना, सिंगल फरमाइश हम बताए ठीक है पहले इंगे से बतिया ली
0: ना अपने
2: कैसे रोज हमार बताए ली फरमाइशी।
1: अच्छा रोज डिसाइड कर नहीं लो की
0: जा के बताए एक बार।
2: हां हम जा के बताए
0: पूरा। हां हां बोली यार सब ठीक बा ना?
1: जी जी सब बढ़िया बा।
0: खाना वाना हो गया
1: ना? खाना तो नीचे बैल आ जाए एक बार वगैरह खाए।
0: अच्छा आई लो
2: खीर पूरी बना ला।
1: हां पहुंचे तक। हां मां भारती जी।
0: हां आ जाई लो।
2: हां हम खिया दे मैं भाती दी गई खिया दे।
1: अच्छा जी बिल्कुल। अभी बता दी कौन सा गाना सुने?
0: अभी बताते नहीं रुकी, गा के बताते नहीं। हाँ
1: हाँ बिल्कुल।

0: यही सुना दीजिए
1: जी। गाना तो बहुत ही अच्छा था।
0: यही सुना दीजिए दीदी के सबसे पहले रघुआ के रही और भारती दीदी के जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के और अफसर सर के सोनी दीदी के दिव्या दीदी के और भैया मैं सुनियान और मनीष भी सुनियान और उत्तम सोनी रेशमा और हम
1: जी सबके हमने के परिवार के
0: हाँ सबके सुनी लो।
1: चलिए तो फिर एक साथ ही गाना हम प्ले करता है।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी नमस्ते जी, तो नाम बता दीजिए।
8: मेरा नाम विष्णु कुमार यादव।
7: विष्णु?
8: विष्णु,
7: बहुत ही अच्छा नाम है। और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
8: बलुआ
7: टोला। अच्छा जी, और बताइए आप कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा जी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई है आपको ना। फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा? अच्छा, गाना ये आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
8: राजा कुमार को, राजू कुमार, जितेंद्र कुमार यादव,
7: तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टेलीविजन 90.4 FM में।
1: जी आपको भी मैम। और सब ठीक है?
0: जी जी सब बढ़िया है। नाम बता दीजिए अपना।
1: यासुद्दीन अहमद चौरा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, अपना सब बताइए। लो
0: जी, हम लोग भी बढ़िया है।
1: चलिए अच्छा।
0: तो आप हेलो माई चैट में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, दूसरी बार किए हैं जी। एक बार और किए थे तो सुनवाया गया, गाना सुने थे अपना, बहुत खुशी हुआ।
0: ये कार्यक्रम आप कब से सुन रहे हैं?
1: कार्यक्रम कब से रेडियो चालू हुआ तब से सुन रहे हैं। पहले सुनते थे सिमरन जो मैडम थी नो, समझते थे बहुत बार, वो तो हमको पहचानती थी, लेकिन पता न चले गए होंगे लोग। बहुत दिन से है रेडियो।
0: तो आप ये रेडियो क्यों, मतलब आप रेडियो से सुनते हैं या फिर मोबाइल ऐप से रेडियो सुनते हैं ये कार्यक्रम?
1: रेडियो से सुनते हैं, दुकान है हमारा किराना सुरती के, दुकान है खैली बेचते हैं सुरती। जी जी, दुकान है सुनते हैं।
0: तो कार्यक्रम आपको कैसा लगता है रेडियो रेडियो का?
1: बहुत बढ़िया लगता है मैम, एकदम सब सुपर, एकदम रेडियो आपका सुपर एकदम है पूरा। आप ही लोग है जो मन लग रहा है, नहीं तो नहीं मन लगता दुकान। क्या
0: जी बढ़िया।
1: आज कौन सा गाना सुनिएगा? मैम गाना तीसरी फिल्म का नाम है, तीसरी का काम ठीक है। अब मुकेश की आवाज में, दुनिया बनाने वाला क्या तेरे मन में समाया, काहे के दुनिया बनाया, यही सुनना है।
0: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: एक हमारा भाई है वो किचन राम है आए, और जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सभी को और आप लोग को सुनवाना चाहते हैं।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ठीक, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी बहन, प्रणाम, नमस्कार।
13: जी प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन 90.4 FM में।
14: जी बहन, मैं राजू यादव, ग्राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
13: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
14: मैं तो बहन बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ, और आपकी बहुत याद आती रही, इसलिए आज थोड़ा व्यस्त होने के कारण कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया बहन।
13: चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी तो कॉल लग गया है।
14: कॉल लगाएंगे तो कॉल क्यों नहीं लगेगी, लेकिन हम थोड़ा कृषि कार्य में व्यस्त रहे इसलिए नहीं लगा पाए।
13: चलिए कोई बात नहीं है, तो और बताइए कैसे हैं आप, नाश्ता वास्ता हुआ?
14: नाश्ता क्या बहन, खाना खाकर ही आ जाते हैं अपने बगीचे में, और अपना यही कृषि का काम करते रहते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
13: जी जी, तो कार्यक्रम आपको कैसे लगता है रेडियो रिंगजिन का?
14: कार्यक्रम बहन बहुत लाजवाब, भोजपुरिया एक्सप्रेस बहुत सुपर फास्ट चलता है, आनंद आ जाता है।
13: जी जी, तो और बताइए वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
14: जी बहन, मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राजू यादव।
13: तो राजू जी, कौन सा गाना सुनिएगा
14: बहन? आज एक मूवी का नाम है इतिहास, गीत के बोल होंगे, जुदा अपने दिलबर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी, सजन तू आगे मिल गए दिया आगे।
13: जी राजू जी, आप तो गाना बहुत ही अच्छा गा लेते हैं।
14: बहन कुछ लाइनें भी कहेंगे?
13: जी बिल्कुल।
14: हंसते हुए दिल में गम भी है, मुस्कुराती हुई आंखें नम भी हैं, आप यूं ही हंसते मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी।
13: अरे वाह, बहुत ही अच्छा लाइन बोले।
14: जी बहन जी,
13: और ये गाना जो आप बताए थे वो गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
14: हाँ बहन, सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले साथियों के साथ ये गीत सुनाते
13: हैं। ओके राजू जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
14: जी बहन प्रणाम नमस्कार।
13: जी प्रणाम नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
14: जी बहन जी।

0: जी
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। मेरा नाम रिया है, गोपालगंज से बोल रही हूँ।
1: जी रिया जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: मैम मुझे गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: अनिल कमल सिंह का नहीं है जो कोड़े से मेरे कराना नई हर छुट्टी चला यही वाला।
1: और ये गाना आपको सुनाना भी चाहेंगे?
0: जी मैम, आपको और पूरे रेडियो रिंगटोन सुनने वाले श्रोता
1: को। तो क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगी?
0: हमें उतना तो याद नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं है,
0: जी मैम फिर कभी सुना देंगे।
1: जी जी बिल्कुल, तो चलिए आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: बाय बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्ते दीदी
10: जी। नमस्ते।
9: चिन्ह कर रही?
10: हाँ जी हाँ, आप वैसे अपन नाम बता रही है, फंसना तो बड़े बहन, लेकिन रोगा बताई थी तो सही
9: रही। अच्छा,
10: रुआ गणेश बोलता है ना
9: जी, जैसे हम जानते निकाले पूछे तो नहीं।
10: हाँ,
9: जवान भी रिश्ते लोग पहले हमें अगर पहचान नहीं, अगर बाद हम बताए।
10: हाँ,
9: चलिए, बहुत खुशी की बात है, बात करके मिला 1 हफ्ता 10 दिन पर।
10: अच्छा जी।
9: हाँ,
10: चलिए, वैसे बात करके हमके भी बहुत अच्छा लगे।
9: बात वाला सुनिए दीदी।
10: हाँ बोलिए।
9: तनी अपना सर से बोलें कि मान लीजिए थोड़ा दशहरा पूजा आ रहा है, तो अभी तो भक्ति सॉन्ग का सब लोग फरमाइश करेगा। ये शो में नहीं बोल रहे हैं, जो 12 बजे नहीं चलता है उस शो में बोल रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा दशहरा पूजा आने वाला है तो भक्ति उसमें भी बजेगा, थोड़ा अच्छा लगता था।
10: उसमें सर से बोलने के लिए उनका शो चलता है, अपना संदेश मिला कार्यक्रम, आप उसमें बताए
9: जी।
10: हाँ जी, तो आप सब बताए, खाना ना भी
9: सब बढ़िया, खाना तो हो गई बा। मेरे पास बतिया नहीं खाती है, हम ऐसी काम नहीं कर लिया अपन।
10: अच्छा,
9: ऐसे की मान ली की थोड़ा छठ पूजा में, दिवाली में, दशहरा पूजा में थोड़ा बर्तन के ज्यादा ना बिक्री चले ला, और ऑर्डर पर ऑर्डर रहेगा, इसलिए तो आपसे बतियाने के लिए फोन, आज काम भी नहीं किए।
10: अच्छा,
9: और सब बताइए।
10: और सब बढ़िया। और आपकी सिस्टर कैसी
9: है? ठीक है सिस्टर जी।
10: आज कौन सा गाना सुनिएगा?
9: गाना आज तो फोन कर रहे तब गाने में भी मेरे को याद नहीं पड़ता है।
10: अच्छा, खुशी
9: के मारे गाएंगे तो बहुत आज खुशी हो रहा है आपसे बात करके।
10: अच्छा,
9: मेरे फरमाई ये सॉन्ग बजा दीजिए, इसमें भक्ति भी आ सकते है ना।
10: हाँ,
9: और ये बात, ये गाना बजा दीजिए, टाटा मूवी के जो छठ पूजा गाना नहीं आया है, टा मुंगेर सुबह, यही सॉन्ग है। पूरा मेरे को दीदी पूरा गाना मालूम नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है गाना, नया नया में टाटा मुंगेर वाला।
10: अच्छा चलिए, अगर मिल जाएगा तो वही बजा देंगे।
9: नहीं, मतलब कोशिश करिएगा कि ये सॉन्ग बच जाएगा तो ठीक रहेगा। टाटा मुंगेर मुंगेर धन्यवाद मझरिया शोभे यही सॉन्ग है, टाटा मुंगेर धन्यवाद झरिया शोभे यही सॉन्ग है छठ पूजा का। हमें सिंगर का तो नाम ही नहीं दे रहे हैं।
10: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी बजाने के लिए, और डेडिकेट भी करना चाहेंगे।
9: डेडिकेट सबसे पहले आपको करेंगे, और करिश्मा जी को रहेगा, मनीष भैया को रहेगा, बिट्टू जी को रहेगा, सुन दीदी को रहेगा, भारती दीदी को रहेगा, त्रुति दीदी को रहेगा, दिव्या दीदी को रहेगा, और अफसर सर का रहेगा, पंकज सर का, सोनू सर का, और दिलीप राम नहीं जुड़ते हैं दिल्ली से, उनका भी रहेगा डेडिकेट, और एक और जो उत्तम सोनी जी का रहेगा डेडिकेट, और रेशमा जी का रहेगा, निर्मला जी को रहेगा, और जितना रेडियो जिम सुन रहे हैं सभी लोग का रहेगा।
2: दीदी के।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी सलाम
0: जी, वालेकुम सलाम
1: जी। मनोरमा मैम बोल रही
0: हैं जी।
1: जी मैम और सब बताइए कैसे हैं?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। मैम आप पहचानती हैं?
0: जी
1: जी मैम, आप मेरा नाम बता सकती हैं क्या?
0: नाम तो बता सकते हैं लेकिन आप बताते तो ज्यादा बेहतर हो।
1: नहीं देख रहे हैं मैम, पहचान रही है कि नहीं?
0: तो ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं।
1: जी मैम कोई बात नहीं, हम सबसे जल्दी गोपालगंज से बोल रहे हैं। और मैम आपसे एक शिकायत ये है कि ये गलत बात है कि नहीं इतना पहले आप चालू कर दी?
0: पहले नहीं, टाइम देखिए टाइम ओवर हो गया।
1: नहीं अभी नहीं, मतलब 10:55 में लगाए हम तो बिजी आ रहा था। जी मैम हम सोचे तो ऐसे मतलब जैसे राइट 11 बजे गए तो हम लगाए हुए एक नंबर में कॉल, क्योंकि मतलब एक सप्ताह हो गया एक नंबर में लगाए हुए, उसी का टाइम लग नहीं पाता है इसीलिए। और आज फाती मैम का बाद में रिकॉर्डिंग है ना?
0: जी मेरे बात रिकॉर्ड करेंगे।
1: टाइमिंग चेंज हो गया आप लोगों का मैम?
0: जी जी
1: जी मैम, हमको तो एक गाना सुनाइए अरिजीत सिंह की आवाज में। गाने का बोल है लो मान लिया हमने, ऐसा ही कुछ गाना है।
0: तो क्या आप मुझे गा के नहीं बताएंगे?
1: तो हम गा ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन गा नहीं पाते।
0: एक बार कोशिश तो करिए।
1: जी मैम हम गा नहीं पाते, कोशिश करते हैं, ये है कोशिश की। मनोरंजन से बात होगा तो गाना सुनाएंगे लेकिन गा नहीं पाते हैं।
0: आपको तो पता है कि मैं आप लोग से गाना गवा के आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ।
1: जी मैम वो तो मालूम है हमको, लेकिन कोशिश किए थे लेकिन गा नहीं पा रहे।
0: कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे बोलेंगे गाने के लिए।
1: देखते हैं, आपसे तो बहुत दिनों बाद बात हो रही है। क्योंकि वजह ये है कि हमको 12 बजे टाइम मिलता नहीं है और उस टाइम का आप रिकॉर्डिंग करती हैं, इसलिए हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं मैम जी। मतलब उस टाइम हमको टाइम मिलता नहीं है अक्सर।
0: तो अभी रात हो गई ना?
1: जी मैम बहुत दिनों बाद रात हो गई। हम भारती मैम से पूछ रहे थे आप रिकॉर्डिंग नहीं करे क्या? सर मैं वो अभी रानी भी नहीं जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम से।
0: जुड़ते ही होगी?
1: नहीं, 2-3 दिन से सुन रहे हैं तो नहीं आ रहा है उनका रिकॉर्डिंग।
0: मंडे को कॉल की थी सर, और कल भी 12 बजे वाले शो में जुड़ी।
1: हमने मिस किया होगा, मतलब कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है। और मैम वो परिश्रमा जी है, वो लगता है कि मतलब कितना पुरानी लिसनर है, वैसे बात करती है, हमको बहुत हंसी आता है।
0: अच्छा लगता है मुझे भी बात करके।
1: हाँ कभी कभी तो आपसे झगड़ा भी कर लेती है।
0: हर किसी को पहचान।
1: हाँ हम कुछ और आप तो हमको नहीं पहचान रही।
0: नहीं नहीं आपको भी पहचान है, आपका नाम नहीं रखना क्योंकि आप होंगे या नहीं।
1: लेकिन मैम आपको कंफ्यूजन भी था थोड़ा सा, क्योंकि आवाज कभी कभी चेंज हो जाता है आदमी का। बहुत लामा मैम आज भी बात हो रहा था, देख रहे हैं कब से।
0: जी जी हम जब रिकॉर्डिंग करने चलते हैं तो इतना देर से बात करता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता।
1: मैम हम आपको एक बात बता दें कि आज जितना हम कोशिश किए हैं उतना मतलब पहली बार किए हैं, मतलब 200 पार हो गया कॉल। और किचन से सोच रहे थे कि आपसे बात करें, आप सबसे गाना गवा कर मतलब रिकॉर्डिंग करती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
0: हम तो आपसे भी गवा के पूछते लेकिन आप नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम तो जरूर आपसे भी गवाएंगे। और गाना डेडिकेट भी करेंगे?
1: डेडिकेट है आपको और भारती मैम को, सभी आरजे को, सभी रेडियो दोस्त को जो अभी सुन रहे हैं।
0: ओके सर जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: ओके मैम बाय।
0: बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: एपिसोड नंबर 55।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फल मूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: एपिसोड नंबर 56, 56।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृत सनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्स।
5: एक नया इनोवेशन लाएंगे तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के बराबर का हो जाएगा।
6: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज
7: नौकर्मी वायुसेना के साथ साथ NDRF और SDRF की 41 टीमें तैनात। विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने मदन मोहन झा को फिर से बनाया उम्मीदवार। और बरौनी हाथीदह रेल मार्ग पर नवनिर्मित डबल ट्रैक रेल पुल पर आज मध्य रात्रि से 4 अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन बंद। सुरक्षा और संरक्षा जांच के बाद परिचालन होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर प्रदेश में मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर राम वचन राय ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी है। इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया, साथ ही कई जगहों पर स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। पटना स्थित इनर्जी इंटरनेशनल में अध्यक्ष विजय नारायण झा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन शास्त्री नगर पार्क में किया गया, जहाँ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। गांधी जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद 44 कैदियों को रिहा किया गया। इनमें से बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बीमार कैदियों की है। एक गंभीर रूप से बीमार और लगभग 20 साल से जेल में बंद महिला कैदी को भी मानवीय आधार पर रिहाई दी गई। रिहाई की सिफारिश राज्य कैदी परिहार समिति ने की थी। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के सभी 1377 थानों और चौकियों में चाइल्ड हेल्प डेस्क यानी बाल सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित तथा संवेदनशील माहौल उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और जीविका के 20 वर्ष पूरे होने पर जदयू की ओर से आज पटना समेत प्रदेश भर में नीतीश संवाद जीविका के 20 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
8: पटना में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने जीविका की सफल यात्रा को याद करते हुए राज्य की सभी जीविका दीदियों को बधाई दी। शेखपुरा में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने जीविका दीदियों का उत्साह वर्धन करते हुए इसे बिहार में नारी सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत बताया। रोहतास में आयोजित कार्यक्रम में

0: ठाकुर।
1: प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। गंडक और गंगा नदी में रिकॉर्ड जल प्रवाह के बीच उत्तर बिहार के कई जिलों में तटबंध और रिंग बांध टूटने से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। सारण के पानापुर में सरोजा भगवानपुर के पास गंडक का बांध टूटने से 6 गांव में पानी फैल गया। तरैया के राजधानी गांव में भी लगभग 30 फीट में रिंग बांध टूट गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में रिंग बांध टूटने से 300 घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 4 दिनों में चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिले में 14 जगह तटबंध और रिंग बांध टूट चुके हैं। गंडक के बढ़े जलस्तर से वैशाली जिले के 11 इलाकों में भी पानी पहुंच गया है। पश्चिम चंपारण जिले में पूजा पटजिरवा मुख्य मार्ग पर एक पुलिया चंद्रावत नदी के दबाव से टूट गई है, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में वायुसेना की मदद ली जा रही है।
0: बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना ने कल से राहत कार्य शुरू कर दिया है। सारण के पानापुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री वितरित की गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 27 टीमें तैनात की गई हैं। लोगों की सुविधा के लिए 328 नावों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में 240 सामुदायिक रसोई केंद्र और 2 राहत शिविर संचालित भी किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: इस बीच जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर सारण जिले के रेवाघाट में 56 सेंटीमीटर और वैशाली के लालगंज में 2 मीटर ऊपर बना हुआ है। संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: डॉक्टर संजय यादव, कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से असदुल्ला खान को उम्मीदवार बनाया है। विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू के अंदर चल रहे विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सौंपी गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार नीरज कुमार को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह के रुख पर पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान लिया है।
1: ये बात पार्टी के संज्ञान में है और हम लोगों के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी के क्षेत्र का भी इशू है। पार्टी ने बात किया है उनसे और उन्हीं को जवाबदेही दी है कि वो इसको बात करके रिजॉल्व करें, मेरे ख्याल से रास्ता निकल जाएगा।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक और चार देशों के अध्ययन दौरे के बाद आज पटना पहुंच गए हैं। पटना हवाई अड्डे पर विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। बेगूसराय में बरौनी हाथीदह रेल मार्ग पर आज रात 12 बजे से 4 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नवनिर्मित डबल ट्रैक रेल पुल की सुरक्षा और संरक्षा जांच के लिए रेल परिचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान CRS स्पेशल ट्रेन से नए डबल ट्रैक पुल पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे और लूप लाइन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया जाएगा। 3 और 4 अक्टूबर को रेल संरक्षा आयुक्त की टीम पुल और इससे जुड़े रेल मार्ग ROV और RUV का गहन निरीक्षण करेगी। जांच में सब कुछ संतोषजनक पाए जाने पर 5 अक्टूबर से दोनों पुलों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने को है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देना, कारोबार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना था। बीते वर्षों में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था,
4: भारत में मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल दे रहा है। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, भारत की दवाएं और वैक्सीन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें भारत की रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है।
3: बिहार में भी स्थानीय उद्यमी विनिर्माण और कारोबार के बढ़ते अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के एक उद्यमी आदर्श कुमार ने बताया कि घरेलू स्तर पर तकनीक और सुविधाओं की उपलब्धता से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।
5: मेरा नाम आदर्श कुमार है। मुझे लगा कि बिहार में कुछ करना चाहिए हमें। मैं एक्चुअली कोविड में अपना प्लान किया कि मैं यहाँ आऊँ और कुछ अपना सेटअप करूँ। फैब्रिक बाहर से आता है, बाकी सारे चीज इनहाउस है। ये बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हर चीज इनहाउस है, फ्रॉम वॉशिंग, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, सब कुछ ही हमारा इनहाउस होता है। हम आउटसोर्सिंग कुछ नहीं करते, फैब्रिक आता है हमारा और फिर पैक होके निकलता है।
3: मेक इन इंडिया ने भारत में विनिर्माण को नीति के केंद्र में लाने के साथ घरेलू उद्योगों और निवेश के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। बिहार में भी उद्यमिता, निवेश और रोजगार के विस्तार के लिए इस पहल को महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुपौल में जिला विधिक के सेवा प्राधिकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। रोहतास में अभियान के तहत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए 3 जागरूकता रथों को उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अररिया जिले के 2811 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर के बनकट गांव में ज्योतिया पर्व को लेकर तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के कायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर गांव से पुलिस ने लगभग 2.5 किलो मादक पदार्थ के साथ भाई बहन को गिरफ्तार किया।

गया है। इनके पास से 2,10,000 रुपए भी बरामद किए गए। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में ज्योतिया लोक उत्सव का आयोजन हुआ। बिहार के सांस्कृतिक कैलेंडर में पहली बार शामिल इस उत्सव का उद्घाटन विधायक ललन राम और जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने किया। लोक परंपराओं, लोक गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजे इस कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के खटीकन गांव निवासी बीएसएफ जवान राजनाथ पासवान का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। असम में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, राहत और बचाव कार्य में वायुसेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने मदन मोहन झा को फिर से बनाया उम्मीदवार। और बरौनी हाथीदह रेल मार्ग पर नवनिर्मित डबल ट्रैक रेल पुल पर आज मध्य रात्रि से 4 अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन बंद। सुरक्षा और संरक्षा जांच के बाद परिचालन होगा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80 0 23 35 8 76 या 95 9 99 27 9 82।
10: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
11: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
10: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
12: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुनो दिल से
1: ओए
2: प्रमोशन लेटर
1: कंग्रेचुलेशंस
2: थैंक यू
1: वाओ
2: बेबी बैंगलोर
1: आई होप यू सेड नो
2: नो मैं नो क्यों बोलूंगी
1: हाँ मेरा क्या होगा एज इन हमारा क्या होगा
2: बाबा तुम्हारे हमारे की बात नहीं है तुम्हें पता तो है ये प्रमोशन मुझे कितनी मुश्किल से मिली है आई हैव टू गो टू बैंगलोर
1: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझसे पूछने क्यों आई
2: हेलो मैं पूछने नहीं आई हूँ मैं बताने आई हूँ I don't have to ask you anything, और मैं जा रही हूँ बैंगलोर Whatever.
1: Listen, baby.
2: Don't talk to me.

0: तो तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तुम अकेले बैंगलोर में क्या करूंगा? बैंगलोर तो तुम जा रही हो।
1: मैं नहीं जा रही बैंगलोर, तुम भी नहीं जा रहे हो, कोई बैंगलोर नहीं जा रहा।
0: तुम
1: लड़ रही हो। Listen, you're not going to Bangalore and don't trouble me now. सुबह से रो रही हूँ मैं।
0: It's all my fault ना।
1: और क्या? सुबह से रोए जा रही हूँ।
0: अरे मैं हर बार तो रोती
1: हूँ। You don't care about my feelings only. So I don't want to talk.
0: चलो हम लोग साथ में।
1: You idiot.

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2027 को इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2027 का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत नोटिस आयोग की वेबसाइट पर 16 सितंबर 2026 को जारी किया जा चुका है। इंजीनियरी सेवा की प्रधान परीक्षा का आयोजन होगा 18 जून 2027 को। उम्मीदवारों को केवल upsconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, किसी अन्य माध्यम से आवेदन करने की अनुमति नहीं है। पात्रता संबंधी शर्तों, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा योजना, परीक्षा केंद्रों, आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी दिशा निर्देशों आदि के लिए उम्मीदवार परीक्षा का विस्तृत नोटिस देखें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड बी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 12 और 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत नोटिस आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16 सितंबर 2026 को उपलब्ध हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 6 अक्टूबर को साय 6 बजे तक किया जा सकता है। उम्मीदवारों को केवल upsconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, किसी अन्य माध्यम से आवेदन की अनुमति नहीं है। पात्रता संबंधी शर्तों, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम और योजना, परीक्षा केंद्रों, आवेदन प्रपत्र भरने के दिशा निर्देशों आदि के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा का विस्तृत नोटिस देख लेना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग इन पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए अपनी वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद हैं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में सहायक विधायी परामर्शदाता। 8 रिक्तियां उपलब्ध हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC में विशेषज्ञ ग्रेड 2 कनिष्ठ वेतनमान, कार्डियोलॉजी के पद के लिए 1 रिक्ति उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये वेबसाइट देख लेनी चाहिए और इन पदों के लिए आवश्यक तमाम शर्तें और जानकारियां भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट है upsconline.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुँचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
8: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
7: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
8: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
7: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
8: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
7: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710 30 9 92 या 90 65 65 7 50।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के साथ ही गोपालगंज जिले का 54वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जन प्रतिनिधियों ने आज भी लगातार किया दौरा, प्रभावित लोगों को की गई सहायता। बांध टूटने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को किया गया निलंबित। पानी में डूबने से एक मासूम की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। और जीविका के 20 साल पूरे होने पर नीतीश संवाद का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और गोपालगंज जिले का स्थापना दिवस धूमधाम से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाया गया। गांधी जयंती के अवसर पर माई भारत द्वारा आयोजित रिफॉर्म उत्सव के तहत जिले के विभिन्न ग्राम सभाओं में माई भारत स्वयं सेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। स्वयं सेवकों ने ग्राम सभा सदस्यों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद कर सरकार के सुधारों एवं प्रमुख जन कल्याणकारी पहलों की जानकारी साझा की। स्वयं सेवकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड एवं उपलब्ध लाभ के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी, ताकि नागरिक संबंधित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। ग्राम सभा के दौरान स्वयं सेवकों ने ग्रामीणों की जिज्ञासाओं को समझते हुए संबंधित योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं की जानकारी सरल एवं सहज तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर स्वच्छता ही सेवा अभियान भी चलाया गया। इसके तहत शहर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। जिला स्काउट एवं गाइड तथा NCC के बच्चों ने रैली के माध्यम से स्वच्छता एवं जन भागीदारी का संदेश दिया। रैली को मिंज स्टेडियम से उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौक बस स्टैंड के पास पहुंची, जहां रैली श्रमदान कार्यक्रम में परिवर्तित हो गई। इस दौरान स्वच्छता
13: कर्मियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी और नगर परिषद के सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इधर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला युवा अधिकारी शशांक मित्तल की अगुवाई में गोपालगंज के माई भारत स्वयंसेवकों ने युवा मंडल के सदस्यों ने गंडक नदी के बढ़े जलस्तर से प्रभावित गांवों में राहत एवं सामुदायिक सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। सदर प्रखंड के जगीरी टोला सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर श्रमदान एवं सेवा दान किया तथा जरूरतमंद समुदायों को सहयोग प्रदान किया। ऐसे मौके पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी सेवा संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरक मिसाल बनी। माय भारत के स्वयंसेवकों ने अपने समय और श्रम को जनसेवा के लिए समर्पित कर यह संदेश दिया कि मुश्किल समय में युवा शक्ति समाज के साथ खड़ी है। जिले के स्थापना दिवस पर जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज वासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए जिले के 54वें स्थापना दिवस पर जिले वासियों के सुख समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बाढ़ की स्थिति पर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इस बार गंडक में 2003, 2017, 2022 और 2024 से भी ज्यादा पानी आया, जिसके वजह से बैकुंठपुर की कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई। दो दो जगह पर बांध टूट गया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य को फिलहाल तेज किया है। डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ समेत तमाम अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांधी जयंती, स्थापना दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर गोपालगंज के भी तमाम जनप्रतिनिधियों ने गोपालगंज वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज जनप्रतिनिधियों का लगातार दूसरे और तीसरे दिन भी दौरा जारी रहा। अलग अलग तरीकों से जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा की, उन्हें मदद पहुंचाया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम और तमाम पदाधिकारी गण भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता में लगे रहे। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बंजरिया, डुमरिया, गंभारी इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना, कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर राहत व्यवस्था की भी जानकारी ली, फसल क्षति के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर वार्ता की, बांध को काटे जाने की ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच का उन्होंने भरोसा दिया और बांध काटने वाले दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की बात कही। दरअसल ग्रामीणों में ऐसा आक्रोश है कि बांध को काटा गया है और लोगों ने इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से की तो उन्होंने तुरंत सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत एवं बचाव का कार्य संचालित किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने गुरुवार की रात्रि में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री का वितरण कराया। शीतलपुर से पकहा बहरामपुर तटबंध क्षेत्र में 1500 पैकेट राहत सामग्री और 1200 प्लास्टिक शीट का वितरण किया गया। उप विकास आयुक्त ने प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन की सतत निगरानी और मुस्तैदी से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इधर जादोपुर थाना क्षेत्र के खैरटिया रामनगर गांव में एक 10 साल का छात्र पानी में डूबकर मर गया। बताया जा रहा है कि बांध के पास नहाने के दौरान मासूम की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि परिजन डूबने के बाद तुरंत स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे को पानी से निकालकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृत छात्र खैरटिया रामनगर के विनोद राम का 10 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इसमें आगे की जांच पड़ताल की जा रही है तथा परिजनों को आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में देर रात तक डीएम एसपी ने भी लगातार दौरा किया है, तटबंधों का जायजा लिया। तटबंधों पर सीपेज और रैट होल के स्थिति की जांच कर संवेदनशील स्थलों पर तत्काल मरम्मति का कार्य तेज कराया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर रहकर भी अधिकारियों को मरम्मति कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। बरौली के विधायक मंजीत सिंह ने भी इलाके का दौरा किया, जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मंजीत सिंह ने कहा कि नेपाल में हुई भारी बारिश के वजह से गंडक नदी का जो जलस्तर बढ़ा है और बढ़ने के वजह से बांधों पर दबाव पड़ा, जिसके वजह से बांध टूटा है। हालांकि ग्रामीणों के बांध काटे जाने पर उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच कर इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। जीविका के 20 साल पूरे होने पर आज गोपालगंज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जदयू पार्टी के तरफ से जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित नीतीश संवाद में आज जदयू पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें जदयू के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही और तमाम पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और भारी संख्या में जीविका दीदियां भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। इस दौरान जीविका के 20 साल पूरे होने पर उत्सव के तरह इस आयोजन को मनाया गया। सिरीपुर थाना की पुलिस ने आज 306 लीटर शराब बरामद करते हुए एक कार को जब्त किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मिश्र बतराहा स्थित तीन मुहानी सड़क के पास वाहन जांच करते हुए इस गाड़ी को पकड़ा। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस को देखकर तस्कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हुंडई अक्सेंट कार को जब्त कर कार के मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर लिया है और कार तथा शराब को जब्त कर अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी नरेश यादव पिता झंगरू यादव साकिन मधु सरिया थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज का निवासी है। पुलिस ने पहले से इस पर मामला दर्ज किया था, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माधोपुर थाना की पुलिस ने पूर्व के चोरी कांड में दो अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इन दोनों अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी छोटे लाल प्रसाद पिता हरि बालक प्रसाद साकिन सरिया नरेंद्र थाना माधोपुर का निवासी है और दूसरा विशाल कुमार पिता मनोज शाह साकिन शेर बिशुनपुरा थाना फुलवरिया का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अब इन पर विधिक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इन पर चोरी का आरोप है और चोरी की सामग्री भी इन लोगों के पास से पुलिस ने बरामद की है। कृषि अनुसंधान परिसर पटना में स्वच्छता दिवस के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के प्रथम चरण का समापन हुआ। इस दौरान सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, जय जवान जय किसान के प्रणेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तथा स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान प्रथम चरण के समापन पर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत की भावना के साथ विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास के द्वारा संस्थान में कार्यरत सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया। आज जीविका के 20 साल बेमिसाल नीतीश संवाद कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जदयू रीता देवी ने किया, जबकि मंच संचालन प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ निरुपमा सिंह ने किया। जीविका समूह की दीदियों और जदयू महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुनील कुमार ने कहा कि आज बिहार में महिलाओं के जीवन में जो प्रगति आई है उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। भोरे थाना की पुलिस ने स्मैक जैसे मादक पदार्थों के बिक्री की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5.41 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर भोरे ब्लॉक के मेन गेट के पास कुल्फी की दुकान पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां दो लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी आलोक कुमार सिंह पिता दिलीप कुमार सिंह साकिन भीखा छापर एवं राजीव कुमार पिता मुन्ना राम साकिन हरिहरपुर दोनों थाना भोरे जिला गोपालगंज के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने स्मैक एवं गांजा का कारोबार करने तथा भोरे एवं आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर इसकी बिक्री करने की बात स्वीकार की। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधिवत तलाशी लेने पर आलोक कुमार सिंह के जीन्स पैंट के दाहिने पॉकेट से एक सफेद प्लास्टिक में रखी 14 पुड़िया एवं एक खुला पैकेट में स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया, जिसका कागज सहित वजन 2.55 ग्राम बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के साथ ही गोपालगंज जिले का 54वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जन प्रतिनिधियों ने आज भी लगातार किया दौरा, प्रभावित लोगों को की गई सहायता। बांध टूटने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को किया गया निलंबित। पानी में डूबने से एक मासूम की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। और जीविका के 20 साल पूरे होने पर नीतीश संवाद का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
15: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
14: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
15: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
14: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
15: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
14: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
16: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
18: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल। बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
21: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
22: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
23: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
24: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
25: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
24: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
26: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
24: संपर्क करें 9939365923।
27: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
28: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
29: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
30: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
31: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
32: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:26 हो रहे हैं स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है और फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप सुन पाएंगे। यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल फरमाए अपने पसंद के गाने, हम बिल्कुल सुनाएंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी विलेश सविया फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है करना शके हम प्यारे का सौदा, प्लीज़ सुना दीजिए। सर जी तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अभी टाइपिंग कर रहे हैं। तो चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। फिलहाल हम कमलेश जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो MCM 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, फिर अपने गाने के साथ इंजॉय करना है। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं। मुझे गाना सुनना है करी के जीवतिया, यही गाना सुनना है भाई। सविता चौहान भोज छपरा से, सबसे पहले आपको भाई और सभी दोस्त के साथ। तो चलिए सभी दोस्त के साथ ही इंजॉय करना है, आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि वीरेंद्र कुमार बैगा, वैभव बैगा, विलेज पोस्ट चौरी गौरिया टोला डिस्ट्रिक्ट उमरिया MP से जुड़े हुए हैं और शंख की फरमाइश करते हैं, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। तो चलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम सविता चौहान के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द।

0: पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है। फिर आपकी फरमाइश हम कुछ ही समय में प्ले करेंगे और आप सुन पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी फरमाएं। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो शामिल करते हैं। लिखा गया है कि सुपर बेस्ट सॉन्ग मैसेज करती हैं निशा भारती, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स भाई। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमछम सुनने के लिए, सविता चौहान। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत खूब गाना, जय हो। हाय, हेलो, राम राम, गुड इवनिंग सनु भाई, केम छो? सॉन्ग की फरमाइश करते हैं, तो चलिए आपकी ये फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और फिलहाल बने रहे हमारे साथ और इस मैसेज को करते हैं रेडियो फैन पंकज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्कार। बिल्कुल, आपको भी नमस्कार है, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में राघव जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोना भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, आप सभी के बीच में शामिल हो गया हूं, सविता जी की सुपर सॉन्ग दिलीप राम दिल्ली से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दिलीप जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा यदि फरमाइश पहुँचता है तो। हाँ, यदि आपका फरमाइश पूरा नहीं हुआ हो इस सप्ताह, तो ही गाने के फरमाइश करें, क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है। तो ऐसा ना हो कि सप्ताह में कोई दो दिन सुने और कोई एक भी दिन ना सुन पाए, तो थोड़ा सा सब्र करना है और दूसरों को भी मौका देना है। आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पर अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है MP से, और गाने की फरमाइश किया गया है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। तो प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सब रेडियो 98.4 FM पे शो चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मैं भी जुड़ गई हूँ, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम। नीसू झिरवा से और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू मेरा भी हाजिरी लगा ले, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र गुप्ता भैया खखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मुझे लगा कि सीट खाली है, तो अभी तो कंफर्म नहीं हो सकता है क्योंकि अभी गाने हमें प्ले करना है और मेरे पास गाने हैं, यदि खाली पड़ता है तो बताएंगे और आप लोग तैयार रहें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं रेडियो फैन पंकज, और गाने की फरमाइश करते हैं सोना के जीवतिया सिंगर टुनटुन यादव, डेडिकेट टू ऑल रेडियो दोस्तों को एंड रेडियो फैन पंकज नाम से मोहब्बत करने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और लेकिन हाँ, आज तो पर्व के उपलक्ष्य में गाने प्ले हो रहे हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना है कि पुराने गाने के लिए एक कार्यक्रम चलता है, तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे तो बेहतर रहेगा। और हर रोज़ निवेदन भी की जाती है कि पुराने गाने के साथ ही इस कार्यक्रम में आपने हाजिरी लगाएं, तो थोड़ा सा समझना है। फिलहाल हम गाने को प्ले करते हैं, पंकज जी आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 98.4 FM पे।

0: भाई से बड़ा कोई नहीं खेलू।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
5: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म। हर ब्रेक बात में आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सोशल एसएमएस फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया बॉस। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है भोजपुरी अंदाज में सुपर सॉन्ग मैसेज करती है निशा भारती। और आगे मैसेज अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है राघव जी की तरफ से। गाने का बोल देते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, यही सॉन्ग चला दीजिए। सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्तों को, स्पेशल में पंकज जी को, और इस मैसेज को पहुँचाए हुए हैं राघव जी ओम साई टेलर। तो आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

काफ़ी प्यारा संग रेडियो रमझिम 90.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी मुकेश जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और पुराने गाने बहुत प्यारे लगते हैं और रात्रि के समय में स्पेशल। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि राघव जी दीवारों के भी कान होला और डर तो होके के चाहिए, काहे भाभी माई की गैली बनी का। सुपर गीत। और मैसेज करते हैं पंकज जी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, दिल से थैंक यू आपको। चलिए आपको धन्यवाद है राघव जी रेडियो रमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे लिखा गया है कि सर मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज़। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, और चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। दलाल मूवी से गाने की फरमाइश करते हैं, तो आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा शान। रेडियो रेमछिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और यहाँ पे अगे मिसेज पहुँचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सॉन्ग प्ले करने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमछिम सुनने के लिए। अगे मिसेज पहुँचा हुआ है, रुकल पानी में ढिलाना मारा रजू, सुपर गीत। मैसेज करतनी पंकज जी, और बनल रही हमारा साथ ऐसे ही। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। कभी हंसना है कभी रोना है, एक किस्मत का फसाना है। डेडिकेट आपको एंड ऑल लिसनर को। और इस गाने की फरमाइश करती हैं निशा भारती। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए कुछ और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी और काफ़ी लेट। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर दिल से सो मच सॉन्ग सुनाने के लिए। इस सॉन्ग में इस सॉन्ग से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। इस सॉन्ग के साथ आपके शो में एंट्री की थी पहला सॉन्ग। ओह चलिए अच्छी बात है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि वैसे सोनू भाई भोरे में दही चूरा खाए के बाद बिल्कुल, और सबसे पहले तो राघव जी खाए कैसे कि वो अभी से चिंता में पड़ गई बानी कि पता ना नींद खुली कि ना खुली, ना तो दही चूरा ना मिली। और कौनो बात ना राघव जी, इतना चिंता देखे करे के दही चूरा रहा और हिस्सा धैल रही। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि पंकज जी के लिए खास शायरी, रात की चांदनी में एक पैगाम लिखते हैं दोस्तों के नाम, एक खूबसूरत सलाम लिखते हैं, पंकज जी जैसे दोस्त मिल जाए अगर ज़िंदगी में तो हर रात को हम यादगार शाम लिखते हैं। सोनू सर के साथ एक प्यारा सा अंदाज, सोनू सर की आवाज़ में मिठास बनी रहे, दोस्ती की महफिल में हर पल खास बनी रहे, चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो जाए, पंकज जी और दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। और दोस्तों के लिए लाइनें, ना दौलत की चाहत ना शोहरत का अरमान है, दोस्तों की हंसी की हमारी सबसे बड़ी पहचान है, रात गुजर जाए बातों बातों में यूं ही, यही दोस्ती की रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा वरदान है। बिल्कुल काफ़ी प्यारा लाइन सभी। और आगे मैसेज हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। अंतिम गाने हम प्ले करते हैं मीनू की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और इन्हीं के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक आप सब सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम जो हमेशा कहता है सुनो दिल दिल से। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: कहा आपका ये बजा ही सही कि हम

थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर।

0: ए, क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।

दोस्तों, कार्यक्रम हर सिंगार में आज यहीं तक। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं कि आपके जीवन में मोहब्बत के ऐसे ही खूबसूरत गीत हमेशा बजते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मास्टर निर्गुणो के भाव लगा दी का
1: ना व्यास रहे दे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: और

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
2: कौन जी बोल रहे हैं?
1: कहाँ से?
2: हथुआ से।
1: तो कैसे हैं आप?
2: ठीक है। मनोरमा जी की भारती जी?
1: मनोरमा।
2: अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ। तो क्या आप हेलो माय चॉइस में पहली बार कॉल किए हैं पवन जी?
2: ना, दो बार किए थे।
1: अच्छा,
2: सुनने में भी मजा आता है। दुकान भी है, दुकान पर आदमी रख देता है ब्लूटूथ लगा के, आराम सुनता है।
1: तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
2: बहुत अच्छा लगता है। सभी तो 11 बजे का इंतजार करते करते अभी इतना समय हो फोन लगा है।
1: तो ऐसे क्या करते हैं आप?
2: अपना दुकान है मेडिकल का।
1: अच्छा,
2: डॉक्टर जावेद आलम का कंपाउंडर है।
1: ये बहुत अच्छी की बात है
2: जी।
1: तो कौन जी, कौन सा गाना सुनिएगा?
2: रब जो चाहे तुझको प्यार हो जाए, वही सुना दीजिए।
1: तो हम तो आपको गाना जरूर सुनवाएंगे। तो क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे? तो

0: ना पूरा याद नहीं है इसीलिए।
1: कोई बात नहीं, बस आप तो दो लाइन ही गाना है।
0: गाने दीजिए, अगला बार गा के सुना देंगे।
1: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है
0: जी।
1: तो गाने के बोल एक बार और बता दीजिए।
0: रब जो चाहे तुझको प्यार हो जाए, हिंदी गाना है
1: जी। और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: नहीं, अपने दोस्त लोग को, आपको भी, पूरा रेडियो रिंजिंग सब श्रोता लोग को जी।
1: ओके पवन जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: जी जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिंग 90.4 FM।
0: जी जी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: बहुत
1: अच्छा आपका रेडियो 90.4
0: FM। हाँ, सलाम अस्सलाम
1: वालेकुम। हम जाकिर हुसैन गोपालपुर जादवपुर से बिहार से।
0: जी जाकिर जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैडम, हम ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम भी बढ़िया हैं।
1: अब मैडम क्या चल रहा है आजकल?
0: क्या होगा, बस कुछ नहीं, आप लोग से बातें हो रही हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है।
1: बहुत अच्छा, चलिए मैडम गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बता दीजिए।
1: अरे मैडम एक गाना आता है सजनवा पहरी पहली हमारे, उसमें गाना है आज के दिन तारी बाबू जी रही थे घर हुआ हो, इसमें हमको गाना सुनना है।
0: तो जाकिर जी ये गाना आप मुझे दो लाइन गा के बताएंगे?
1: जी तो मैम गाना याद नहीं, मगर दूसरा गा सकते, उतना याद नहीं मैम, थोड़ा गा सकते हैं, सुना सकते हैं।

0: मैडम याद नहीं है, इसी चलते बोले।
1: जी जी कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छा गाया।
0: अपना दोस्त का नाम लेना चाहते हैं मैम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, सुफियालम है, मिराज है, यीशु पन्नी है, जितलेश शर्मा, गोविंदा और मनोज और इन सबको, रेडियो यूनियन को, पूरा परिवार को, आपको भी।
1: ओके जैकी जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो।
4: हाँ हेलो, नमस्ते
3: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: कैसी हैं
3: जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
4: मैं भी ठीक हूँ। अब खाना वाना हो गया?
3: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आपका हुआ?
4: हाँ, अभी जस्ट हुआ।
3: चलिए बढ़िया है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
4: मैं लईभाता से बोल रही हूँ।
3: अच्छा, और आपका नाम?
4: मेरा नाम उषा है।
3: तो उषा जी, आप हेलो माई चॉइस में पहली बार कॉल की हैं?
4: नहीं, कितनी बार कर चुकी हूँ।
3: अच्छा जी,
4: अभी अगली बार वाला मेरा रिकॉर्डिंग चला भी नहीं है।
3: जी जी, क्या है ना, अभी बहुत सारे कॉल हैं तो आज बजेंगे।
4: और आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो?
3: जो आज रिकॉर्डिंग हो रहा है वो कल चलेगा।
4: ओके
3: जी। तो उषा जी, आज कौन सा गाना सुनिएगा आप?
4: आज मुझे गाना सुना दीजिए, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, ओल्ड सॉन्ग ही है
3: जी। तो उषा जी, ये गाना आप मुझे गा के बताएंगी?
4: I'm सॉरी, मैं गाती नहीं, ओनली सुनती हूँ।
3: इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
4: हाँ, सुनवाना चाहूंगी ना, जिसके लिए है वो खुद सुन लेगा।
3: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
4: थैंक यू
3: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: ओके, बाय
3: बाय।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं सुधीर कलपुर, करीमा जिला देवघर झारखंड से।
0: जी सुधीर जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: बहुत ट्राई करने के बाद लगे, सोमवार को तो 300 से ज्यादा बार लगाए थे लेकिन नहीं कॉल लगी, आज भी 200 से ऊपर कॉल किए तब जाके अब लगी।
0: अच्छा जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
1: जी जी जी, इतने भी लिसनर भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना, इसीलिए तो।
0: जी जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है।
1: जी
0: चलिए, कोई बात नहीं, अब तो कॉल लगी है, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: आज पुरानी फिल्म का गाना है, मैम लता मंगेशकर की आवाज में आया था, झूम के गाना, जिसके बोल हैं रामा दुहाई रामा दुहाई।
0: जी जी, और ये गाना डेडिकेट भी है।
1: जी सबसे पहले मैं आपको और जितने रेडियो के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके सुधीर जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: कॉल रिसीव करने के लिए धन्यवाद मैम।
0: वेलकम।

0: हर का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone kinde bajte hai to kehte hai hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की

0: वॉइस को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत
1: नमस्ते दी, प्रणाम और राधे राधे। और कैसन बानी बताई रहुआ?
2: जी नमस्ते, प्रणाम राधे राधे। हम भी ठीक बानी रहुआ, बताई की रहुआ।
1: बिल्कुल चकाचक रहुए के जैसा
2: रहेगी चाहिए।
1: और आज स्टार्टिंग से रहुए बानी क्या?
2: जी
1: चलिए, बिल्कुल बहुत लोग ख्वाहिश रहा, बात ना हो रहा, पूरा कर देनी का। और नाश्ता वास्ता कर ले बानी?
2: हाँ जी, हो गई बाइला।
1: हाँ हाँ बिल्कुल हो गई बा।
2: टाइम आज बहुत ही कम बा, बता दी जाना।
1: जी जी, टाइम तो बहुत कम बा, कहीं जाए
2: जी जी। एक बात से भारती जी रिकॉर्ड कर,
1: भारती जी का
2: भारती जी भी यही बानी। हेलो जी जी, गाना बता दिया?
1: गाना बता हमेशा हम अपना पसंद से सुने नहीं तो रहुआ बजा दिया बस।
2: अच्छा चलिए, हम अपन पसंद से कई और दिन मतलब बजा दें, आज बता देना रहुए। बहुत मुश्किल से कॉल के लिए बानी।
1: हेलो
2: जी, आवाज कट कट ऐसी आता रहो।
1: नेटवर्क के प्रॉब्लम बना और कह देनी, हमेशा तो हम अपन पसंद के सुने नहीं ना, इतना दिन बाद बैल बता रहो, अपना पसंद से बजाई।
2: हमारे पसंद के तो रोज बाजे रहुए, इतना मुश्किल से कॉल कैले बानी।
1: ना ना ना जैसे हम फोन कैले बानी तो हम अपने पसंद के सॉन्ग सुनने वाली रहो, अपना पसंद से बजाई आज पसंद के सुने के बाद।
2: चलिए जब रघुआ कहते हैं तो बजा दे, वैसे भोजपुरी में सुने
1: राउर पसंद आ रहा होगा, हम जज करे के चाहे ना राउर पसंद कैसन बा रहुआ बजाई।
2: अच्छा जी,
1: अच्छा जी, और कहा बा रहुआ? हमेशा सब रोज अली जी कॉल करते रहिए रहुआ से बात करे खातिर, और बात होते रहा भारती जी है, भारती जी से। और काफी आजकल भोजपुरी काफी नीक बा, वहाँ क्या बहुत अच्छा कढ़ाई करता नहीं, बोल लेता नहीं अच्छा खासा, अच्छा लगा था सुन के। और पता ना आज आज की रिकॉर्डिंग में रहुआ से बात भैल बागे नहीं के भैया, हमेशा भारती दीदी से पूछत रहनी है।
2: जी जी, बात तो भाई रहुआ के भी पूछत रहनी है कि रानी जी कॉल करिए रानी
1: है। और बहुत अच्छा बोला था नहीं भोजपुरी, और बोलते बोलते था, और हमने के गांव में रह कर अगर भोजपुरी ना बोली तो भोजपुरी के फायदा करता है क्या?
2: बात तो
1: और ये बताई रहुआ, कहते रही हमारे घर खेती ना होला तो रहुआ सच में खेती बाड़ी नहीं की देख ले ना? और देखिए अगर ना लगत की आवाज से अपना मुंह से अगर कोनो बात कह दे तो अगर नहीं की देख ले तो आई हम देखा दी रहुआ के।
2: बिल्कुल
1: सच में नहीं देख ले
2: जी?
1: सच में नहीं देख ले,
2: थोड़ा बहुत देख ले मौसम में कौन।
1: अच्छा हम बताओ तनी, ये घड़ी के दिन में धान होला, एक बाद गेहूँ बुआई, मकई बुआई, आलू बुआई, सरसों बुआई, सोडा बुआई, और एक बाद पूरा फसल जबरदस्त हो या और आए तो हम धान काटे के सिखा दे। हाँ ये घड़ी धान बोवाला, और वैसे सवाल के लिए रही अपना साइड के बताई की हमने के सोबीन वोबीन बोवाला तो काफी अच्छा लग रहा है, हमने की तो सारी जानकारी बा गाँव में बानी तो सबके पता बा ना।
2: तो रानी जी हम
1: जी कहीं
2: बहुत ही मन
1: करता, बिल्कुल आयम आयम, अगर ये ध्यान अगर रखे तो वो लोग स्टूडियो में आए तो डायरेक्टर सर से परमिशन लेने के पड़ेगा, तो अगर रहुआ ये बात गौत एकदम जरूर आएंगे एक बार। जी जी, और मिले और ये गाना सब कोई की सवार है रानी की तरफ से ठीक बा, और काफी भोजपुरी निक निक लगा था सब कोई के रहुआ दोनों आदमी के हमारा तरफ से। और आज हम 12 बजे वाला शो में ना जुड़े, मम्मी फोन लेके गई बनी गोपाल गई तो देखिए आगे क्या होता। जी
2: चलिए तो फिर गाना,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही आप एकदम यही अंदाज में बात करते रहिए एकदम सबके दिल जीत लेवे के बाद।
2: जी जी, रहुआ सपोर्ट काम होती,
1: बिल्कुल हमार सपोर्ट तो पूरा कहे ढाका भर के बाद।
2: चलिए तो फिर प्ले करता है सबके साथ।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते,
1: कैसी हैं मैम?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक है,
0: चलिए बढ़िया। तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: आज सुना दीजिए नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
0: ओके, वैसे आपका नाम?
1: मनीषा कुमारी कन्या सुंदर से।
0: जी मनीषा जी, और ये गाना आप जो बताएंगे वो किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
1: जी मैम, आपको और भारती मैम को और दिव्या मैम को, श्रुति मैम को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को।
0: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: बाय मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: थैंक यू मैम।
2: जी नाम बता दीजिए।
3: मेरा नाम गुलेन अंसारी है
2: जी। और कहाँ से?
3: मैं बैकुंठपुर से बोल रहा हूँ, मेरा जिला गोपालगंज पड़ता है। जी बताइए मैम, कैसी हैं आप?
2: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: हम भी अच्छे हैं, आज तो फोन लगाते लगाते थक गया था, आज हम भी सोच लेते सुनी के मानेंगे गाना।
2: अच्छा जी।
3: हाँ तो क्या कल ही वॉइस योर चॉइस में फोन लगा रहे थे हम, लेकिन लग रहा था लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहे थे फोन, बाद में फोन रिसीव हुआ था हमारा, तो गाना सुन लिए थे।
2: आपको सोचा ना आप अपने गाने की फरमाइश को सुन लिए तो
3: मेरा गाना सुनवा दीजिएगा, चेहरा तेरा किताबी किताबी।
2: जी गाना तो बहुत ही अच्छा है।
3: जी बहुत अच्छा है।
2: ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
3: मैम हम गाना नहीं गाते, सिर्फ सुनते हैं।
2: गाना तो बहुत ही अच्छा, आप दो लाइन ही गाते तो बहुत अच्छा होता।
3: चेहरा तेरा किताबी किताबी, हट आँखों में जवाबी जवाबी, चेहरा तेरा किताबी किताबी, हट आँखों में जवाबी जवाबी। बस इतना ही आता है मैम।
2: जी आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं।
3: थैंक यू।
2: जी इतना अच्छा गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता है।
3: ज्यादा नहीं गाता हूँ।
2: चलिए तो कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा आपका गाना मुझे सुन के।
3: जी सुनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको रेडियो सभी लिसनर के साथ।
2: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
1: हाँ प्रणाम
0: जी। प्रणाम
1: क्या हाल बा
0: जी? ठीक बा। आप बताइए रघु कृष्ण मानी
1: जी। आज आज आरती जी से पत्रकार का दोस्त हो गई।
0: हाँ आज आरती जी की रिकॉर्डिंग बारी बारी की बात से बा।
1: अरे बाप रे बाप, ये लोग कहा जला है की एक बात करे के ओकरा से बात ना होला। सही बताओ तनी आज आरती जी से
0: आरती जी से बात कर ले। पहले रघुआ गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
1: पहले आप सुनाए आज।

0: पूरा दिन में एक्शन तो ना हुई एकदम फेवरेट गाना ना बजे फेवरेट गाना बजे कर ला तो यही पर बात लाइक है कोशिश ना हो कोशिश करे जाएंगे।
1: अच्छा
0: हाँ ये से बढ़िया रहेगा।
1: और गाने कैसे सुनाए की विचार करनी
0: मनोरमा जी के भारती जी के और अनिल जी जोधपुर वाले और लोग भैया के जितना सामने वाले।
1: अच्छा तो चलिए फिर हम गाना हम प्ले करता नहीं
0: वो कुछ है।
1: हाँ बता दी
0: सुना मिश्रा सिंह जी
1: जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना सुना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम
5: जी। नमस्ते।
6: भारती मैडम?
5: नहीं,
6: मुनार्मा जी।
5: हाँ जी।
6: हाँ जी, बोलिए।
5: नाम बता दीजिए अपना।
6: विकास कुमार हिंसापुर
5: जी। विकास जी, क्या हाल चाल है?
6: हेलो।
5: हाँ जी।
6: हाँ बोलिए, क्या हाल चाल है मैडम
5: जी? मेरा तो ठीक है, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
6: बढ़िया है जी, आपसे बहुत काफी दिन से बात हो रहा है, काफी दिन के बाद।
5: अच्छा जी,
6: कैसे हैं आप?
5: जी मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ।
6: अच्छा, और गोपालगंज में तो बाढ़ उड़ आ गया है जी?
5: गोपालगंज में बाढ़ आया है लेकिन हमारे तरफ नहीं आया है।
6: हाँ, इधर में हम लोग का तरफ ऊंच एरिया है ना
5: जी। तो और विकास जी बताइए, क्या हो रहा है?
6: बस काम धाम हो रहा है, आप लोग से बात करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। कंपनी में काम कर रहे हैं, दिल्ली नोएडा।
5: अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।
6: और भारती मैडम कैसे हैं?
5: जी भारती मैडम भी अच्छी हैं।
6: अच्छा, और सोनी मैडम चली गई क्या? उनसे बात नहीं होता है, वो कॉल नहीं बात। और बताइए मैडम कैसे हैं आप?
5: जी जी सब कोई बढ़िया है। तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
6: हमको वो नील कमल का गाना सुनना है, छठ पूजा का।
5: अच्छा,
6: वो नील कमल का नहीं है, छठ छठ का गाना।
5: जी जी,
6: वो बहुत मस्त लगता है।
5: हाँ, गाना तो अच्छा ही लगता है।
6: हाँ, उसके पास में वो मालूम ना कौन से गायकरी है, वो भी खूब बढ़िया गाती है वो।
5: जी जी।
6: हाँ,
5: और ये गाना जो बताए वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
6: आप लोग का दोनों अम्बी को सुनवाना है, भारती मैम को और मुनार्मा जी को, और जितना रेडियो सुनने वाले सबको डेडिकेट करना चाहते हैं।
5: ओके विकास जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
6: मेरे घर में मेरे मम्मी और मेरी मैडम को, एक मेरा दोस्त है गुरदेव।
5: अच्छा अच्छा।
6: हाँ,
5: तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
6: ठीक है, ओके मैडम
5: जी। सुनते रहिए सबको प्रणाम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते दीदी
0: जी। नमस्ते,
1: क्या हाल हुआ
0: जी? हाल तो ठीक बा रहुआ, बताएंगे रहुआ कैसन बानी?
1: हाँ ठीक बानी। भारती दीदी क्या बानी?
0: भारती दीदी भी बानी, काम करता नहीं अपन।
1: खाना वाना हो गया बा?
0: हाँ जी हो गया बार, और भेल
1: हा? हाँ हमने के हो गए बा, अब दोबारा हई।
0: अच्छा चली गई।
1: और सब बोली?
0: और सब ठीक बा। वैसे कहाँ गए रही रहुआ?
1: एनिये रानी है द्वार की ओर।
0: अच्छा लेट हो गए रहुआ कॉल करे में?
1: लेट हो गए से वही ब्रश लगावत रहनी है।
2: अच्छा सिंगल फरमाइश हम बताए ठीक है पहले इनके से बतिया ली
1: ना
2: कैसे रोज हमारे बता दी फरमाइशी।
0: अच्छा रुए डिसाइड कर नहीं लो की
1: जाके बताए एक बार।
2: हाँ जाके बताए
1: पूरा। हाँ बोली और सब ठीक बा ना?
0: जी जी सब बढ़िया बा।
1: खाना वाना हो गया बा?
0: ना खाना तो लेके बैला जाए एक बार रुआ घरे खाए।
1: अच्छा आई लो
2: खीर पी बनल बा।
0: हाँ पहुँचे तरी। हाँ माँ भारती जी।
1: हाँ आ जाइ लो।
2: हम रुए खिया दे मैं भारती जी के खिया दे।
0: अच्छा जी बिल्कुल। अभी बता दी कौन सा गाना सुने?
1: अभी बता दी गा के बता दी। हाँ
0: हाँ बिल्कुल।

0: यही सुना दीजिए।
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा था।
0: ये सुना दीदी के सबसे पहले रघुआ के रही और भारती दीदी के जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के और अफसर सर के सोनी दीदी के दिव्या दीदी के और भैया मैं सुनियान और मनीष भी सुनियान और उत्तम सोनी रेशमा और हम।
1: हाँ जी सबके हमने के परिवार के हंसन।
0: हाँ सबके सुनी लो।
1: चलिए तो फिर एक के साथ गाना हम प्ले करते हैं।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम। जी नमस्ते जी, तो नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम विष्णु कुमार यादव है।
1: विष्णु
2: विष्णु
1: बहुत ही अच्छा नाम है। और कहाँ से बोल रहे हैं
2: आप?
1: बलुआ टोला। अच्छा, और बताइए आप कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा जी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई है आपको ना। फिर आज कौन सा गाना सुनिएगा?
2: गाना सुनाए साथ में तो रही है
1: जी।
2: तो अपना से वही गाना सुनते वही गाना सुनते।
1: अच्छा, गाना ये आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
2: राजा कुमार को, राशि कुमार, जितेंद्र कुमार यादव, चुमनियारा है, और आपको जितने भी रेडियो इंडियन सिंगर होता है सभी को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो की रिव्यू 90.4 एफएम में।
1: जी आपको भी मैम। और सब ठीक है?
0: जी जी सब बढ़िया है। नाम बता दीजिए अपना।
1: यासुद्दीन अहमद चौरा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, अपना सब बताइए लोग।
0: जी हम लोग भी बढ़िया है।
1: चलिए अच्छा।
0: तो आप हेलो माइक्रेस में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं दूसरी बार किए हैं जी। एक बार और किए थे तो सुनवाया गया, गाना सुने थे अपना, बहुत खुशी हुआ सुन।
0: तो ये कार्यक्रम आप कब से सुन रहे हैं?
1: कार्यक्रम कब से रेडियो चालू हुआ तब तक सुन रहे हैं। पहले सुनते थे सिमरन जो मैडम थी नो, समझते थे बहुत बार, वो तो हमको बहुत पहचानती थी, लेकिन पता न चले गए होंगे लोग, बहुत दिन से है रेडियो।
0: तो आप ये रेडियो क्यों, मतलब आप रेडियो से सुनते हैं या फिर मोबाइल ऐप से रेडियो सुनते हैं ये कार्यक्रम?
1: रेडियो से सुनते हैं, दुकान है हमारा किराना सुरती से दुकान है, खैनी बेचते हैं सिर्फ।
0: अच्छा
1: जी जी, दुकान है सुनते हैं।
0: तो कार्यक्रम आपको कैसा लगता है रेडियो रिव्यू का?
1: बहुत बढ़िया लगता है मैम, एकदम सब सुपर, एकदम रेडियो आपका सुपर एकदम है पूरा। आप ही लोग है जो मन लग रहा है, नहीं तो नहीं मन लगता दुकान के।
0: आप कौन सा गाना सुनिएगा?
1: आज गाना तीसरी फिल्म का नाम है, तीसरी कहता हूँ ठीक है। अब मुकेश की आवाज में दुनिया बनाने वाला क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाया, यही सुनना है।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
1: जी एक हमारा भाई है वो किशन राम है, आए और जितना रेडियो रूम जिनमें सुनने वाला है सभी को और आप लोग को सुनवाना चाहते हैं।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
1: ठीक, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they match the head, don't get the hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी बहन, प्रणाम, नमस्कार।
5: जी प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी बहन, मैं राजू यादव, ग्राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
5: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
6: मैं तो बहन बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ, और आपकी बहुत याद आती रही, इसलिए आज थोड़ा व्यस्त होने के कारण कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया बहन।
5: अरे चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कॉल लग गया है।
6: कॉल लगाएंगे तो कॉल क्यों नहीं लगेगी, लेकिन हम थोड़ा कृषि कार्य में व्यस्त रहे इसलिए नहीं लगा पाए।
5: अच्छा, कोई बात नहीं है। तो और बताइए कैसे हैं आप, नाश्ता हुआ?
6: नाश्ता क्या बहन, खाना खाकर ही आ जाते हैं अपने बगीचे में, और अपना यही कृषि का काम करते रहते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
5: जी जी, तो कार्यक्रम आपको कैसे लगता है रेडियो रिंगटोन का?
6: कार्यक्रम बहन बहुत लाजवाब, भोजपुरिया एक्सप्रेस बहुत सुपर फास्ट चलता है, आनंद आ जाता है।
5: जी जी, तो और बताइए वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: जी बहन, मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राजू यादव।
5: तो राजू जी, कौन सा गाना सुनिएगा
6: बहन? आज की मूवी का नाम है इतिहास, गीत के बोल होंगे, जुदा अपने दिलबर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी, सजन तू आगे मिल गए दिया आगे मिल।
5: जी राजू जी, आप तो गाना बहुत ही अच्छा गा लेते हैं।
6: बहन कुछ लाइनें भी कहेंगे?
5: जी बिल्कुल।
6: हंसते हुए दिल में गम भी है, मुस्कुराती हुई आंखें नम भी हैं, आप यूं ही हंसते मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी।
5: अरे वाह, बहुत ही अच्छा लाइन बोले।
6: जी बहन जी,
5: और ये गाना जो आप बताए थे, वो गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
6: हाँ बहन, सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले साथियों के साथ ये गीत सुना।
5: ओके राजू जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
6: जी बहन, प्रणाम, नमस्कार।
5: जी प्रणाम, नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: जी बहन जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: जी
1: मेरा नाम रिया है, गोपालगंज से बोल रही हूँ।
0: जी रिया जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप मैं सही हूँ।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: मैम मुझे गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: हाँ नीलकमल सिंह का नहीं है, जो कूड़े से निर्वे करना नहीं हर छुट्टी चला, यही वाला।
0: और ये गाना सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी मैम आपको और पूरे रेडियो रेंजिंग सुनने वाले श्रोता
0: को। क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगी?
1: मैम उतना तो याद नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं है,
1: जी मैम फिर कभी सुना देंगे।
0: जी जी बिल्कुल, तो फिर चलिए आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: बाय
1: मैम।
0: बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते दीदी
3: जी। नमस्ते।
2: चिन्हा का नहीं?
3: हाँ जी हाँ, आप वैसे अपन नाम बता रही है, पहचाना तो बड़े बहन, लेकिन रोगा बताई थी तो सही रही।
2: चन्ना तो रोगा बताई, पहचान
3: पहनता रोगा बताया ना, कोई दिक्कत बा?
2: हम तो बताइए
3: अच्छा, रुआ गणेश बोलता है ना
2: जी, जैसे हम जन निकाय पूछे तो नहीं हम।
3: हाँ।
2: जौन भी रिश्ते लोग बाल हो तो पहले पढ़ दो, पहले हम अगर पहचान नहीं होकर बाद हम बताएं।
3: हाँ।
2: चलिए, बहुत खुशी की बात है, वैसे बात करके मिले एक हफ्ते 10 दिन पर।
3: अच्छा जी।
2: हाँ
3: चलिए, वैसे बात करके हमके भी बहुत अच्छा लगे।
2: बात वाला सुनी ना दीदी?
3: हाँ बोलिए।
2: तने अपना सर से बोली की मान लीजिए थोड़ा दशहरा पूजा आ रहा है तो अभी तो भक्ति सॉन्ग का सब लोग फरमाइश करेगा, ये शो में नहीं बोल रहे हैं जो 12 बजे नहीं चलता है उस शो में बोल रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा दशहरा पूजा आने वाला है तो भक्ति उसमें भी बजेगा तो थोड़ा अच्छा लगता था।
3: तो उसमें सर से बोलने के लिए उनका शो चलता है अपना संदेश मिला कार्यक्रम, आप उसमें बताए
2: जी।
3: हाँ जी, तो आप सब बताए, खाना ना भी
2: सब बढ़िया खाना में तो हो गई बा। मेरे पास बतिया खाती है, हम ऐसी काम नहीं कर लिया अपन।
3: अच्छा,
2: ऐसे की मान ली की थोड़ा छठ पूजा में, दिवाली में, दशहरा पूजा में थोड़ा बर्तन के ज्यादा ना बिक्री चलेगा और ऑर्डर पर ऑर्डर रहेगा, इसलिए तो आपसे बताने के लिए फोन, आज काम भी नहीं किए।
3: अच्छा,
2: और सब बताइए?
3: और सब बढ़िया। और आपकी सिस्टर कैसी
2: है? ठीक है सिस्टर।
3: आज कौन सा गाना सुनिएगा?
2: गाना तो फोन कर रहे तब गाने में भी मेरे को याद नहीं पड़ता है।
3: अच्छा, खुशी के हमारे गाने
2: तो इतना बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
3: अच्छा,
2: मेरा फरमाई ये सॉन्ग बजा दीजिए, इसमें भक्ति भी आ सकते है ना?
3: हाँ,
2: और ये बात, ये गाना बजा दीजिए, टाटा मूवी के जो छठ पूजा गाना नहीं आया है, टा मुंगेल सुबह, यही सॉन्ग है।
3: बताएंगे
2: तो पूरा मेरे को दीदी पूरा गाना मालूम नहीं, नहीं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है गाना, नया नया में टाटा मुंगेल वाला।
3: अच्छा चलिए, अगर मिल जाएगा तो वही बजा देंगे।
2: नहीं नहीं, मतलब कोशिश करिएगा कि ये सॉन्ग बज जाएगा तो ठीक रहेगा। टाटा मुंगेल धन्यवाद मझरिया सुबह, यही सॉन्ग है। टाटा मुंगेर धन्यवाद झारिया सोभे, यही सॉन्ग है छठ पूजा का। हमें सिंगर का तो नाम ही नहीं दे रहे हैं।
3: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि वही बजाने के लिए। और डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
2: डेडिकेट सबसे पहले आपको करेंगे, और करिश्मा जी को रहेगा, मनीष भैया को रहेगा, बिट्टू जी को रहेगा, सुन दीदी को रहेगा, भारती दीदी को रहेगा, त्रुति दीदी को रहेगा, दिव्या दीदी को रहेगा, और अफसर सर का रहेगा, पंकज सर का, सोनू सर का, और दिलीप राम नहीं जुड़ते हैं दिल्ली से, उनका भी रहेगा डेडिकेट, और एक और जुड़ उत्तम सोनी जी का रहेगा डेडिकेट, और रेशमा जी का रहेगा, निर्मला जी को रहेगा, और जितना रेडियो जिम सुन रहे सभी लोग का रहेगा।
4: मनोरमा दीदी के।
3: अच्छा जी,

0: कंफ्यूज हो जाते हैं।
1: जी मैम, कोई बात नहीं, हम सत्योज अली गोपालगंज से बोल रहे हैं। और मैम आपसे एक शिकायत ये है कि ये गलत बात है कि नहीं इतना पहले आप चालू कर दी?
0: पहले नहीं, टाइम देखिए टाइम ओवर हो गया।
1: नहीं अभी नहीं, मतलब 10:55 में लगाए हम तो बिजी आ रहा था। जी मैम, हम सोचे ऐसे मतलब जैसे राइट 11 बजे गए तो हम लगाए हुए एक नंबर में कॉल, क्योंकि मतलब एक सप्ताह हो गया एक नंबर में लगाए हुए, कोशिश करते हैं लग नहीं पाता है इसीलिए। और आज साथी मैम का बाद में रिकॉर्डिंग है ना?
0: मेरे बात से रिकॉर्ड करेंगे।
1: टाइमिंग चेंज हो गया आप लोगों का मैम?
0: जी
1: मैम, हमको तो एक गाना सुनाइए अरिजीत सिंह की आवाज में। गाने का बोल है लो मान लिया हमने, ऐसा ही कुछ गाना है।
0: आप मुझे गा के नहीं बताएंगे?
1: तो हम गा ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन गा नहीं पाते।
0: एक बार कोशिश तो करिए।
1: जी मैम, हम गा नहीं पाते, कोशिश करते हैं। ये है कोशिश की मनोरंजन से बात होगा तो गाना सुनाएंगे लेकिन गा नहीं पाते हैं।
0: तो पता है कि मैं आप लोग से गाना गवा के आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ।
1: जी मैम, वो तो मालूम है हमको, लेकिन कोशिश किए थे लेकिन गा नहीं पा रहे।
0: कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे बोलेंगे गाने के लिए।
1: देखते हैं, आपसे तो बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
0: क्योंकि
1: वजह ये है कि हमको 12 बजे टाइम मिलता नहीं है और उस टाइम का आप रिकॉर्डिंग करती हैं, इसलिए हम फर्स्ट में लगाते हैं मैम की, मतलब उस टाइम हमको टाइम मिलता नहीं है अक्सर।
0: तो अभी बात हो गई ना?
1: जी मैम, बहुत दिनों बाद बात हो गई। हम भारती मैम से पूछ रहे थे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं क्या, सर में वो आप जानी भी नहीं जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम से?
0: जुड़ते ही होगी।
1: नहीं, 2-3 दिन से सुन रहे हैं तो नहीं आ रहा है उनका रिकॉर्डिंग।
0: मंडे को कॉल की थी सर, और कल भी 12 बजे वाले शो में जुड़ी
1: हुई। हमने मिस किया होगा, मतलब कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है। और मैम वो परिश्रमा जी है, वो लगता है कि मतलब कितना पुरानी लिसनर है, वैसे बात करती है हमको बहुत हंसी आता है।
0: अच्छा लगता है मुझे भी बात करके।
1: हाँ, कभी कभी तो आपसे झगड़ा भी कर लेते हैं।
0: क्या
1: हम लोग एकदम हर किसी को पहचान आप तो हमको नहीं पहचान रही?
0: नहीं नहीं, आपको भी पहचान है, आपका नाम इसलिए नहीं रख सकते।
1: लेकिन मैम आपको कन्फ्यूजन भी था थोड़ा सा, क्योंकि आवाज कभी कभी चेंज हो जाता है आदमी का। बहुत लामा मैम आज भी बात हो रहा था, देख रहे हैं कब से।
0: जी जी, हम जब रिकॉर्डिंग करने चलते हैं तो इतना देर से बात करता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता।
1: मैम हम आपको एक बात बता दें कि आज जितना हम कोशिश किए हैं उतना मतलब पहली बार किए हैं, मतलब 200 पार हो गया कॉल। और किचन से सोच रहे थे कि आपसे बात करें, आप सबसे गाना गवा कर मतलब रिकॉर्डिंग करती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
0: हम तो आपसे भी गवा के पूछते, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम तो जरूर आपसे भी गवाएंगे। और गाना डेडिकेट भी करेंगे?
1: डेडिकेट है आपको और भारती मैम को, सभी आरजे को, सभी रेडियो दोस्त को जो अभी सुन रहे हैं।
0: ओके सर प्रोजी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय। सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: भागे भागे फिरते हैं.
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का. तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं. नंबर है 8029494 पर कॉल करके. तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM. नमस्कार.
5: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से.

0: paralelo.
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
2: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लो तत्व से मोहब्बत हो जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।